0: जिंदगी गले लगा ले, व्हाट अ सॉन्ग. गॉश, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स. इट विल ऑलवेज रिमेन माय फेवरेट फ्रॉम अ मूवी व्हिच वाज सो हार्ट रेंचिंग एंड सो ब्यूटिफुली मेड दैट आई स्टिल रिमेंबर इट सो विविडली इवन दो आई वॉच्ड इट इयर्स बैक. रिमेंबर व्हेन इट यूज्ड टू कम ओवर दूरदर्शन द आफ्टरनून मूवीज, दिस वाज वन ऑफ दैट मूवी एंड इट स्टेड विद मी फॉर एवर. दिस एंड देयर वाज अनदर मूवी कॉल्ड अर्थ. Oof, both the movies, powerhouses. Well, even Kamal Hassan, there were so many more. I can go on with the movies. Let me come back to the show. Well, this 1983 Indian, of course, Hindi language romantic drama was written, directed and filmed by Balu Mahendra. Remake of the 1982 Tamil film. This film, this one in Hindi, stars Sridevi and Kamal Hassan in the lead roles. And, well, of course, the tracks were by the highly acclaimed Ilaiyaraaja. What a movie this is. This film's music is considered iconic, particularly the song I just played for you. Well, despite not being a massive box office success during its original theatrical release, Sadma is widely celebrated as a cult classic today. You have to see it to believe it. The way they act, it is beautiful. Both of them, the innocence and the simplicity of Sridevi and the heart-wrenching love, care, emotional attachment that Kamal Hassan gets with her. It had these phenomenal performances. It's just them. This is a timeless classic, and it's so simple, this movie. It kind of explores the fragility of human emotions and relationships. A movie worth a watch. Trust me. It's sad in the end, but it's beautiful. It will stay with you long after you've watched it. Well, go ahead and see it and tell me what you think about it. Remember, this is the place you get to listen to all your favorite tracks, because this is the Matchless Music Hour with some matchless music only on Akashvani FM Rainbow 102.6. Musically yours is me, Pooja Anand. Right now, let's take a short break. We'll be back in just a couple of seconds.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है. ये है जनगणना का अभियान. यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है. साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है. जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है. सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है. घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है. वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे. साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है. आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी. आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं. जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है. यह आईडी आपके मोबाइल

0: या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और अब एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम आज से लागू। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक 298.80 रूपये से बढ़ाकर 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रूपये की कमी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। यूपीआई के माध्यम से पिछले माह 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 23% अधिक। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की मंजूरी दी। इससे रेलवे के डिजिटल संचार नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया। परीक्षा कल से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय शख्सियत विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने की संभावना। और अब खेलों में, फीफा विश्व कप में फ्रांस, नॉर्वे और मेक्सिको अपने अपने मुकाबले

मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त आरजे रॉकिंग रश्मि। जी हाँ दोस्तों, वही अपना जाना पहचाना बॉलीवुड ट्रेल से आपके साथ में। और आज क्या होगा इसमें खास, भाई खास होगा बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सी नई फिल्में रिलीज हुई हैं रिसेंटली, और बहुत जो हमारे एक्टर्स हैं, हमारे जो अभिनेता हैं जिन्हें हम बहुत दिल से बहुत शिद्दत से चाहते हैं, उनकी फिल्में कितनी कितनी फ्लॉप होने के बाद फाइनली हिट हो रही हैं, तो खुशी का मौका है उनके लिए भी, हमारे लिए भी, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी, है ना ऐसा। तो बिल्कुल तैयार रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में, और साथ साथ हम मनाएंगे बर्थडे एक सेलिब्रिटी का, और होगा एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल, किसके नाम होगा भाई, वो नाम तभी पता चलेगा जब आप बताएंगे उसका सही जवाब और बन जाएंगे हमारे बॉलीवुड सरताज। करेंगे हम आपसे छोटी सी बात उस जवाब का सही, उस सवाल का सही जवाब देने के बाद। तो बस रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड रील्स, बॉलीवुड के गलियारे से बहुत सारी ताजा तरीन खबरों के साथ। मैं हूं आपकी अपनी रश्मि।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बॉलीवुड रील्स में आपको बहुत बहुत खुशी वाली खबरें दे रहे हैं हम। अब आप कहेंगे खुशी हमारे लिए क्यों? अरे भाई, अब आपके जो फेवरेट एक्टर जो हैं अच्छा काम करते हैं, अच्छी फिल्में देते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो भी तो खुश होते हैं ना, हम खुश होते हैं, आप खुश होते हैं, है ना। और वैसे भी देखिए ना, पिछले 17 महीने में अक्षय कुमार ने कितनी सारी फिल्में दी, लेकिन जो चली वो थी 6 फिल्में, राइट। और कितनी फ्लॉप देने के बाद फाइनली कौन सी फिल्म ने उनकी जो है किस्मत एक बार फिर से पलटी। हाँ, कह सकते हैं ना कि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से वापसी हो गई है। और देखिए ना, कितने समय से वो तरस रहे थे कि कोई सी फिल्म उनकी अच्छी चल ले, अच्छा परफॉर्म कर ले, तो फाइनली 2026 में उनकी 2 फिल्मों ने तय कर दिया है कि फाइनली अक्षय कुमार अभी वापस नहीं गए हैं जनाब, उनका यहीं पर ही अभी पूरी तरह से कब्जा है बॉलीवुड में। स्काई फोर्स और केसरी चैप्टर 2 ने थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद अक्षय कुमार ने सोचा कि क्यों नहीं कॉमेडी ट्रैक पर एक बार फिर से आया जाए, और इस बार वो प्रियदर्शन के साथ हाउसफुल 5 में नजर आए। और शायद यही वजह है कि 2026 उनके लिए संजीवनी बनकर आया है ना। कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं उनकी फिल्में, कॉमेडी के सहारे ही सही, लेकिन हाँ एक बार फिर से वो बैक टू बैक फिल्में देने लगे हैं। अब यदि हम बात करें स्काई फोर्स की, तो भाई ठीक ठीक गई है ना। उससे पहले सिर्फ फिराक, खेल खेल में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मिशन रानीगंज, OMG 2, कितनी फिल्में ऐसी थी जो मतलब लोगों को उनकी एक्टिंग तो पसंद आई लेकिन फिल्में उतनी ज़्यादा नहीं चली। और उसके बाद आई हाउसफुल 5, खूब चली और खूब उसने नोट छापे। और साथ में फिर आई जॉली LLB 3, उसको भी लोगों ने पसंद किया, लेकिन हाँ फिल्म कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं गई जितनी उनकी जॉली LLB 2 गई थी। और फाइनली भूत बंगला को, प्रियदर्शन की जो भूत बंगला थी उसको अच्छी खासी ऑडियंस मिली और सिनेमा घरों में हिट साबित हुई, और इसे कह सकते हैं कि अच्छा खासा उन्हें रिस्पांस मिला। फिर आई हाउसफुल 5 भी, और अब फाइनली वेलकम टू द जंगल, 4 दिन में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है इस फिल्म में। और इसे कहा जा रहा है कि एक अच्छा संकेत है कि एक बार फिर से अक्षय कुमार वापस इंडस्ट्री में अपना जो एक ऑरा है ना उसे कायम कर पाएंगे। तो भाई हम बिल्कुल यही कहेंगे कि अक्षय कुमार यूं ही अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें, और हम यहाँ पर बॉलीवुड रील्स में उनकी बातें करते रहें।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड रील्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रश्मि, और लेकर आए हैं आज हम आपसे बहुत सारी बातें हमारे बॉलीवुड की। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार की बहुत अच्छा काम कर रही है, और जैसे कि फिल्म का बजट जो मैंने बताया 350 करोड़ के आसपास है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि फिल्म जो है कलेक्शन करेगी 500 करोड़ से ज्यादा की। अब कहा यह जा रहा है यदि ऐसा कुछ भी होता है ना, तो अक्षय कुमार की ये पहली फिल्म होगी जो 500 करोड़ से ऊपर गई होगी। हालांकि इससे पहले 2.0 जिसमें रजनीकांत लीड रोल में थे, उसकी भी कमाई अच्छी खासी हुई थी, लेकिन उस वक्त अक्षय कुमार जो थे वो विलन के रोल में थे। और वेलकम टू द जंगल ने जिस तरह से 4 दिनों में ना 21 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, तो देखने की बात है कि आखिर आगे आने वाले दिनों में वो और क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी। यदि हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो वो है अहमद खान, और 30 से भी ज्यादा बड़े स्टार इस फिल्म में हैं अक्षय कुमार के साथ। सुनील शेट्टी, परेश रावल, अर्शद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर के अलावा भी बहुत सारे। तो आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ इस ट्रैक को। हम वापस आते हैं एक बार फिर से आपके पास बॉलीवुड रील्स में।

0: जी हाँ बिल्कुल, साथ निभाइए आप भी हमारा, चूंकि हम यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर बहुत सारी खबरें हमारी फिल्मी दुनिया की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत सारी खबरें मेरे पास है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले एक ब्रेक ले लूँ। लेकिन ब्रेक से पहले ना मैं आपको एक खबर और देना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे वो क्या? वो ये कि भाई जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर के बाद ना आपसे पूछने वाली हूँ आज का सवाल। और वो सवाल देकर जो सबसे पहले सही जवाब देगा ना, वो बन जाएगा हमारा आज का बॉलीवुड सरताज। तो भाई ये तो मैंने आपको खबर दे दी, अब एक खबर ये है कि जो हमारे राघव है ना, राघव जुआल, उनकी भी एक और फिल्म आने वाली है। और पता है 30 जून को यानी कि कल उसका ऑलरेडी पोस्टर रिलीज कर दिया है गया है। और उसमें कहा गया है, उसकी जो टैग लाइन है वो है, भाई तेरा स्टार है। और फिल्म का नाम भी यही है, पता है आपको। और मतलब अपने आप में जो टैग लाइन है उसमें ये भी बोला गया है, टैलेंट लोडिंग। तो ऑब्वियस ही बात है ना, राघव के पास इतना सारा टैलेंट है। वो हमने उनकी डांसिंग में भी देखा है, उनकी कोरियोग्राफी में भी देखा है, और साथ साथ ना उनकी एक्टिंग में भी देख लिया है, और एक अच्छे कॉमेडी स्टार तो वो हैं ही। तो देखिए, एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां जब होती हैं तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं टैलेंट लोडिंग। और ये जो फिल्म है, ये इसमें एक जो रोल निभा रहे हैं राघव, वो है अजय सिंह का, एक ऐसा नौजवान जो आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और अपने भविष्य के स्टारडम में अटूट विश्वास से भरा हुआ है। फिल्म का यदि डायरेक्शन की बात करें तो वह विवेक बी अग्रवाल ने किया है, और सुदीप्तो सरकार के साथ मिलकर इसे विवेक अग्रवाल ने ही लिखा है। अजय सिंह के किरदार को ना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इस फिल्म में पेश किया जा रहा है जिसके असंभव सपने हैं, और कहीं से भी वो अपने आप को छोटा नहीं सोच रहा। तो बहुत ही इंतजार रहेगा हमें इस फिल्म का। लंदन की जीवंत पृष्ठभूमि पर यह आधारित है, और जिसमें ह्यूमर भी है, यादगार किरदार भी होंगे, म्यूजिक भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। राघव है तो ऑब्वियस सी बात है, एक उनकी डांस सीक्वेंस तो ज़रूर होगी। और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि ये फिल्म, चूंकि राघव एक खुद एक यूथ स्टार हैं, तो यूथ अपील डेफिनेटली होगी। तो मुझे लगता है जब भी ये फिल्म रिलीज़ होगी तो लोगों को के बीच में, ख़ासतौर पर यूथ के बीच में ना, इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होगा। तो भाई ज़रूर जाइएगा ये फिल्म देखने। फ़िलहाल मैं आपको सुना रही हूँ एक ट्रैक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेल दोस्तों, चंदू की गर्लफ्रेंड गाना कौन सी फिल्म से था? ABCD से था, और जिसमें बहुत सारे डांसिंग जो स्टार थे ना हमारे वो थे. लेकिन एक और स्टार है जिनकी बात मैं आपके साथ करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछने वाली हूँ आज का सवाल. आज का बॉलीवुड सवाल बहुत ही आसान है. हम सबके खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की पहली फिल्म कौन सी थी? आपको ये बताना है कि उनकी डेब्यू फिल्म कौन सी थी. जल्दी से बता दीजिए. 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर. अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. और सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए. सवाल है, अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, हमें इंतज़ार है आपके मैसेजेस का.

वेल, आप बिल्कुल भी मत ताके जाके, क्योंकि हम यहीं पर हैं अभी आपके लिए. आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई फिल्म हिट होती है तो उसके बाद जो उसके स्टार्स होते हैं ना, वो अपनी फीस बढ़ा देते हैं. होता है ना ऐसे, भाई उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को और भी ज़्यादा सुपरस्टार समझने लगते हैं. लेकिन शाहिद कपूर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया. अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भाई कॉकटेल 2 सक्सेसफुल हुई है और उसके साथ में शाहिद कपूर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी अगली फिल्म के लिए ना वो पहले से कम चार्ज कर रहे हैं. कॉकटेल 2 में उन्होंने अपनी फीस ली थी लगभग 35 करोड़, लेकिन अब नेक्स्ट फिल्म के लिए सुनने में ये आया है कि उन्होंने 18 करोड़ रुपए की फीस ली है. कितना कम भाई, पूरे 17 करोड़ कम, लगभग 50% कम, है ना. और लेकिन ऐसा हुआ किस लिए है भाई? सक्सेसफुल फिल्म गई है, सक्सेसफुल स्टार हैं शाहिद, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा किया है. तो उसकी वजह ये है कि इस फिल्म के अलावा ना, मतलब इस 18 करोड़ की डील के अलावा एक डील और भी तय हुई है, और वो ये है कि फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें भी शाहिद कपूर का हिस्सा है. भाई कुल कहिए, कुछ भी कहिए, शाहिद कपूर ना पक्के बिजनेस मैन हो गए हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि केवल फीस लेने से, काम करने से काम नहीं मिलता, और काम करने से आगे काम नहीं चलता. यदि फ्यूचर को सेव करना है तो थोड़ा सा बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, और फिल्म की प्रमोशन में, फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में और सब चीज़ों में काम, मतलब साथ भी देना पड़ेगा, और तभी शायद उसके राइट्स या ये कह लीजिए कि उसकी कमाई में हिस्सा होगा, उसके प्रॉफिट में हिस्सा होगा. यदि हम बात करें फिल्म के एक्ट्रेस की, तो इसमें इनके साथ में होगी जाह्नवी कपूर, लेकिन हाँ बाकी जो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन प्ले करेंगे उनके बारे में अभी फाइनल नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, हमने फाइनल कर लिया है कि हम आपको अगला ट्रैक कौन सा सुनाने वाले हैं. एंजॉय कीजिए, वापस आइए, और ध्यान रखिएगा हमारा आज का बॉलीवुड सवाल बहुत आसान है. अक्षय कुमार की पहली फिल्म बतानी है आपको, बस 9868 1070 70 पर.

इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं। ये वो लाइन है जिसने ऑडियंस को ना पागल कर दिया है। जी हाँ, ये लाइन है आवारापन 2 की, जिसका टीजर अभी 2 दिन पहले यानी कि 29 जून को रिलीज कर दिया गया है। आपको ध्यान होगा 2007 में आई थी इमरान हाशमी की आवारापन, और इसमें शिवम पंडित के रोल में ना लोगों ने उनको काफी पसंद किया था, और अब एक बार फिर से इन शिवम पंडित के रोल में उन्हें देखने का इंतजार बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इंतजार है जल्दी से ये फिल्म रिलीज हो और वो इमरान हाशमी को इस जबरदस्त रोल में देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बॉलीवुड ट्रेल्स में लेकर आते हैं आपके लिए ताजा तरीन खबर, तो खबर ये है कि 14 अगस्त को ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और इसी दिन रिलीज होगी सनी देओल की बंटवारा 1947 भी, यानी कि दोनों फिल्मों का क्लैश होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों फिल्मों का जो ट्रैक है या उनका जो एक ऑरा है वो अलग अलग है, तो डेफिनेटली दोनों फिल्मों के ऑडियंस भी जरूर होंगे और अलग अलग टाइप के होंगे। आवारापन में यदि फीमेल लीड की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि उसमें फीमेल लीड निभाया था श्रेया सरन ने, लेकिन इस बार सेकेंड में यानी कि आवारापन 2 में इनके साथ में होगी दिशा पाटनी। और खास बात यह है कि लिस फिल्म में ना इस बार लेडी विलन होंगी, और वो पता है कौन होंगी? वो होंगी शबाना आजमी। जी हाँ, शबाना आजमी को देखने का एक अपना ही क्रेज है, और खास तौर पे यदि

विलन के रोल में वो होंगी, तो मुझे लगता है फिल्म काफी अच्छी निकलने वाली है। फिल्म की यदि डायरेक्शन की बात करें तो पिछली वाली थी मोहित सूरी की, और लेकिन इस पार्ट में लोग उन्हें मिस करने वाले हैं। हालांकि नितिन कक्कड़ ने इसकी कमान संभाली है, और काफी हद तक मुझे लगता है कि मोहित सूरी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी नितिन कक्कड़ पूरा कर पाएंगे, फिल्म को एक अच्छी ओपनिंग भी दे पाएंगे और अच्छी भी चल पाएगी। आवारा पन टू की यदि स्टोरी की बात करें ना, तो कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से वो ख़त्म हुई थी। फिलहाल हमारी कहानी भी वहीं से शुरू हो रही है जहां से ख़त्म हुई थी। हमने आपको कहा था कि आज का सवाल बहुत ही आसान है, अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म का नाम आपको बताना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। 9868107070 हमारा है नंबर, जल्दी से लिखकर भेजिए, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार है, और इंतजार है एक और प्यारे से ट्रैक का, आपको भी हमें भी और सबको।

0 हमारा है नंबर। जल्दी से लिखकर भेजिए, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार है और इंतजार है एक और प्यारे से ट्रैक का, आपको भी हमें भी और सबको।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जी हाँ, और अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जब हम जानेंगे कि कौन बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका नाम। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नाम बताइए आपका और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए।
2: जी मेरा नाम सुनील ठाकुर है, मैं चांदनी चौक दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: चांदनी चौक दिल्ली से सुनील कुमार जी का मैसेज आया है और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। तो सर बता दीजिए कि अक्षय कुमार की पहली फिल्म कौन सी थी।
2: जी अक्षय कुमार का पहली फिल्म सौगंध थी।
1: सौगंध थी, आपको पता है इसमें इनके साथ में एक्ट्रेस कौन थी।
2: जी प्रिया गिल है।
1: प्रिया गिल ना शांति प्रिया थी इनके साथ में।
2: जी
1: भानु प्रिया की सिस्टर शांति प्रिया, और दोनों ही एक्ट्रेसेस रही थी और इनके साथ अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी। सुनील जी क्या करते हैं आप।
2: जी मैं सैलून का काम करता हूँ, सैलून लगाता हूँ।
1: क्या बात है, आप तो लोगों को मतलब फिट बना देते हैं, तैयार मतलब खूबसूरत बना देते हैं, राइट।
2: जी
1: तो बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपने हमें मैसेज किया और आप बने। हाँ इनका रेडियो सेट एकदम बिल्कुल इनके पास में आ गया और इन्होंने उसको स्पीकर के साथ में जोड़ दिया, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे इनको इनकी कॉल को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन हाँ आप बने हमारे बॉलीवुड सरताज, बहुत बहुत मुबारक आपको। और साथ में हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। रोहित श्रीवास्तव ने दिल्ली से लिखा था, सलीम मलिक ने मेरठ से लिखा था, इसके अलावा तरुण कोहली ने लिखा है सूरज कुंड से। और ये कौन कौन है, ये है हमारे बहुत सारे लिसनर्स, एक के बाद एक लिस्ट है। सौगंध प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, इसके अलावा है कार्तिक इलेक्ट्रिक से लिखा है इन्होंने, और उमेश कुमार ने ख्याला से, कीर्ति नगर से मोहम्मद इम्तियाज ने, इसके अलावा है सुख लाल बाला ये है वेस्ट बंगाल से, इसके अलावा विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, धर्मशाला से लिखा है ईशा ने, धर्म भाटिया जी हैं रोहतक से बिल्कुल सही जवाब लिखने वाली, इसके अलावा कौन है, ये हैं हैदर माफ कीजिएगा हापुड़ यूपी से हर्ष लिख रहे हैं, सागर सिंह ने लिखा है सागर सिंह रावत ने लिखा है पौड़ी उत्तराखंड से, इसके अलावा मुदस्सर राणा नवी मुंबई से लिखने वाली हैं सलाइन। और ये कौन है, देखिए मैं कई बार क्या होता है नाम सबके पढ़ लेती हूँ लेकिन हो सकता है आपको ऐसा विजिबल हो कि आपने मैसेजेस आपने हमने आपका देखा नहीं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मैसेजेस हैं, नाम लेना सबका मुश्किल है। वेस्ट बंगाल से हैं सादिर, और ये कौन है, ये हैं इन्होंने नाम सोनू गुप्ता, कमला नगर दिल्ली से नीतीश कुमार ने लिखा है, इसके अलावा है कौन है वेस्ट बंगाल से सादिर का मैसेज है, मैंने पहले भी पढ़ा, जाय अहमद है, प्रियंका मैम नहीं है जनाब, आज आपके साथ हूँ मैं रश्मि, भाई मेरा नाम इतना ख़राब नहीं है कि आप भूल जाएं मेरा नाम, लेकिन हाँ आज चलते चलते मैं आपको एक चीज़ एक व्यक्ति से और मिलवाना चाहती हूँ जिनका बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में, तो ये हैं सुदेश भोसले साहब, अपने आप में जाने पहचाने, जिन्होंने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट किया था कौन सी फिल्म से, ये फिल्म थी जलजला 1988 में, लेकिन अमिताभ बच्चन के हम फिल्म के जुम्मा चुम्मा से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आज हम मना रहे हैं उनका बर्थडे और फिलहाल आपके लिए इन्हीं के गीत के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ और मिलूंगी एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

और अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष पूरे। देशभर में इससे किसानों को व्यापक लाभ हुआ। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक 298.80 रूपये से बढ़ाकर 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी आज से लागू। 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स माफ हो गया है। पुराना वाहन स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर भी 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रूपये, जबकि तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए यह 6,000 शुल्क निर्धारित की गई है। यूपीआई के माध्यम से पिछले माह 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 23% अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया। परीक्षा कल से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। अमरीका में 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने की संभावना। और अब खेलों में। फीफा विश्व कप में फ्रांस, नॉर्वे और मैक्सिको अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: Words, and only words that I have to take your heart away. Falling in love with Backstreet Boys and Boyzone, what can we do? They were simply epic and they still are. If you find a favorite on your sleeve and you want to listen to it, you know what? Just pick up that phone of yours and WhatsApp us in 2 hour show, Play It Cool, on our number 9868107070. That's right, 9868107070. We'll take it on air, that's my promise. But you have to tell me, what is the motto in life that you follow? Simple and straight, what's the motto that you follow? I got loads of messages coming in. Okay, M. Rajkumar from Trichy, for whom Boyzone was played, says, the one advice I like to give anyone and to myself is cultivate a habit of reading books. Can be anything, books, newspapers, blogs, etc. But just reading. And the mantra I follow is simply, work first, leisure next. That way I enjoy the leisure time better. I so agree. We need to finish our work and then we can just about relax. Otherwise, stress seems to hit us from everywhere. Okay, coming up, the song like I promised, Blonde. But before that, let's take a teeny weeny break. Don't go anywhere. Remember, this is the place you'd love to be, because this is the place where we get to play all your favorite tracks. The only station in the nation currently playing Western music for your listening pleasure. Tune in and enjoy.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: Cocktail, but now there with It's My Life. Take a break. We'll be back. You tuned in live to Play It Cool only on Akashvani FM Rainbow 102.6. Musically yours.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: This next track going out very specially for Dr. Ankit Jain, Led Zepp All the Way, Stairway to Heaven.

और अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक 298.80 रूपये से बढ़ाकर 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष भी सफलतापूर्वक पूरे हुए। देशभर में इससे किसानों को व्यापक लाभ हुआ। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी आज से लागू। 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों का पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स माफ हो गया है। पुराना वाहन स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर भी 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रूपये, जबकि तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए यह 6,000 शुल्क निर्धारित है। वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष जून की तुलना में ये 13.9% अधिक। UPI के माध्यम से पिछले माह 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। यह पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 23% अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया। परीक्षा कल से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। अमेरिका में 9वें US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा वहां चलाए जा रहे राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की। उत्तर प्रदेश में आज तड़के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने की संभावना। और अब खेलों में फीफा विश्व कप में फ्रांस नार्वे और मैक्सिको अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: और अब प्रस्तुत है रेनबो हेल्पलाइन।
2: रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और एक बार फिर आपके लिए ले आई हूं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे और यकीनन आज के शो के माध्यम से आप अपने साथ बहुत सारे संदेश अर्जित करेंगे और मेरी ये आपसे उम्मीद है और दावा भी है, वादा भी है कि हम नित्य प्रति कुछ सीखते हैं, कभी खुद से सीखते हैं, कभी दूसरों से सीखते हैं, कभी किसी की सीख से सीखते हैं। और जब हम सीखते चले जाते हैं तो ऐसे में विचारों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बदलते परिवेश में रिश्तों की नई परिभाषा, कैसे वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त में हमारे रिश्ते किस तरह से बदल रहे हैं, हम अपने रिश्तों को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, उनका एहसास हमारे मन में किस प्रकार है और हम अपने रिश्तों में क्या कुछ दे रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे आज इस शो के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सतीश कौशिक जी, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं। तो आज इनके माध्यम से सबसे पहले उस बदलते परिवेश के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे रिश्ते बदल रहे हैं और उन रिश्तों को संजोए रखने के लिए क्या कुछ करना होगा, कैसे खुश रहना होगा, बात करेंगे इनसे। तो आपके मन में अगर विषय संबंधी कोई भी प्रश्न है हमसे संपर्क करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स के माध्यम से। हमारे नंबर्स हैं 2342108080 या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 2342108084। इन नंबर्स के माध्यम से दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड लगाना होगा 011 या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070। तो आप स्वतंत्र होकर अपने मन की बात हमें लिख भेजिए और हम उम्मीद करते हैं कि सतीश कौशिक जी द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। कहते हैं कि दुनिया में हरदम हर पल आपको वो सारथी जरूर मिलेगा जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहती हूँ सतीश कौशिक जी का। सतीश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार
3: जी। जैसा कि हमने आज के जो विषय है उसकी घोषणा की है, बदलते परिवेश में रिश्तों की नई परिभाषा। रिश्ते हमारे लिए शुरू से हमेशा अहम रहे हैं और बदलते वक्त में हमने अपने रिश्तों को अलग अलग तरीके से लेना शुरू किया है। अब सबसे पहले मन में सवाल यही उठता है कि परिवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार बदला है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से हमारा परिवेश आज हम पर या तो हमारे लिए एक नए रास्ते खोज रहा है या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं या यूं भी कहते हैं कि हमारा परिवेश, हमारी लाइफस्टाइल हम पर हावी हो रही है। तो क्या बदलाव है परिवेश में?
4: नहीं देखिये, अगर हम देखें रिश्तों की, जैसे आपने बात की, रिश्ते हमारी जिंदगी की मिठास है। हमारी जिंदगी क्या है? बहुत सारे रिलेशंस जो हैं हमारे वो इकट्ठे हैं सारे के सारे, यही हमारी जिंदगी है और जिंदगी में मिठास लाता है ये। हमारे जिंदगी को एक पर्पस भी देता है ये। हमारी मेंटल हेल्थ को तो ठीक करता ही है, यानी हमारे मानसिक विकास के साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको भी ये ठीक रखता है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, यहाँ तक के रिसर्च ये है कि रिश्ते अगर बहुत अच्छे हों हमारे जिंदगी में तो हमारी जिंदगी की लंबाई बढ़ती है।
3: वाह क्या बात है, बिल्कुल।
4: और अगर रिश्तों में गड़बड़ रहे और सारी जिंदगी भर आप इनमें उलझे रहो तो हमारी जिंदगी कम होती है।
3: वाह क्या बात
4: तो
3: है।
4: ये बहुत जरूरी है और ये इन्नेट है, यानी इन्नेट का मतलब ये है कि गिवन है, यानी बाद में सीखते हैं उनको संभालना, उनको उनकी तरफ ध्यान देना, उनको अच्छा बनाना, खराब रिश्तों को ठीक करना, ये तो अलग है। लेकिन ये एक प्रकृति ने हमें दिया हुआ है कि हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, यानी सोशल एनिमल हुए कि हम लोगों को अच्छा लगता है, इकट्ठे रहना अच्छा लगता है, एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। तो ये रिलेशन है हमारे, तो ये ही हमारे जिंदगी में पर्पस देते हैं, उसको मीनिंग देते हैं। लेकिन देखिए, एक तो सच है, यानी चेंज, यानी आप चाहें या ना चाहें, आप उस चेंज के साथ बदलें ना बदलें, चेंज तो आना ही आना। तो हमारी जिंदगी जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती है तो हमारे ये रिश्तों में भी परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। देखिए, बचपन में जब छोटा बच्चा है तो आप केयर करते हैं उसके, आप केयर गिवर हैं, मदर फादर उसकी केयर करते हैं। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है तो आपका बिहेवियर, देखिए उस टाइम में छोटे बच्चे को, एक 6 महीने के बच्चे को, 2 महीने के

0: बच्चे को और 3 साल के बच्चे को आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपके व्यवहार में और आपके रिलेशंस में परिवर्तन आता है। इसी तरह से जैसे एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं। और एक बहुत कहावत भी है हमारे कि जब बच्चा बड़ा होने लगे, जब बच्चे के पाँव में आपका जूता आने लगे, कहते हैं ना हमारे घरों में, तो वो दोस्त की तरह से, तो आपका रिलेशनशिप चेंज हुआ। इसी तरह से जैसे आप बड़े होते हैं, आपका परिवार बनता है, तो आपका फिर वहां पे भी चेंज है। आपके पेरेंट्स आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरीके से जब 12 साल के थे आप। और इसी तरह से ओल्ड एज में तो हम ये कहते हैं कि दोबारा से आप बच्चे बन गए, तो ये बदलाव आते रहेंगे। बदलाव के साथ साथ ये तो नॉर्मल बदलाव हुआ, लेकिन जो आप परिवेश की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, हमारी टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, हमारा एनवायरनमेंट भी बदल रहा है, सब चीजें बदल रही हैं, तो उसके हिसाब से हमारी कंपल्शंस भी बढ़ रही हैं। पहले लगता था कि आसपास के सिटी में ही मैं नौकरी कर लूं तो ठीक रहेगा, काम चल जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि दूसरी सिटी में जाना चाहिए। दूसरी सिटी के बाद अब मुझे तो बहुत दूर साउथ में जाना चाहिए या नॉर्थ में जाना चाहिए। उसके बाद आज ये है कि मुझे जाके दूसरे कंट्री में मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो मैं वहां आ जाऊं। अब जैसे जैसे आपकी कल्चर, एनवायरनमेंट, लोगों से, जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो, तो बदलाव तो आएगा ही आएगा
1: जी। तो क्योंकि आपने बदलाव की बात की, तो देखिए ना, आप ना जाने कितनों के दिलों के तारों को छू दिया है, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश और कॉल आनी भी शुरू हो चुकी हैं। तो हमारी तो यही उम्मीद है और यही प्रयास भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लिसनर्स हैं उनके जो प्रश्न हैं उनका जवाब दें। हेलो हेलो, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें।
2: गुड आफ्टरनून, मैम अमित की बात कर रहा हूँ मैं।
1: जी अमित जी, अपना सवाल पूछिए।
2: मैडम मेरा सवाल यह है, रिश्ता कोई भी हो, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में प्यार की कमी आजकल क्यों आ रही है? प्यार की भाषा भी गायब है, हर समय चिढ़ना, गुस्सा करना, इस विषय में क्या समझाना चाहेंगे आप समाज को?
1: जी जी, अमित त्यागी का एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत सरल सा जवाब चाहते हैं इस बात का, ये कि आज के युग में अगर हम बात करें तो कोई भी रिश्ता क्यों ना देख लें, पति पत्नी का देख लें, भाई बहन का देख लें, कड़वाहट है, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट है, और हम कहीं ना लड़ रहे हैं अपने हर रिश्ते से। ऐसा क्यों है? क्यों वो प्यार नहीं हम देख पाते हैं जिसके हम उम्मीद करते हैं, जिस रिश्ते के लिए कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी अपने घर परिवार के लिए सौंप देता है कि मेरा परिवार ऐसा रहे, सब में प्रेम रहे, सर्वप्रथम जो घर का हेड होता है, मुखिया होता है। लेकिन आगे चलकर क्या देखा जाता है कि किस तरह से भाई बहन हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, कटुता का आज इस दौर में जो है उसको सहरा है।
0: देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी अपनी अपनी नीड्स हैं, हमारे अपने अपने सोचने का तरीका है। अगर ये सोचें कि मैं परिवार में मेरे 4 भाई या 2 बहनें हैं या मेरा परिवार है, तो ये सारे के सारे मेरी तरह से सोचेंगे, क्योंकि भगवान ने हम सब लोगों को अलग अलग बनाया है। हमारी सोच अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारा लोगों से बिहेवियर का तरीका अलग है, हमारी नीड्स अलग अलग है। किसी की नीड्स कुछ है तो उससे खुश हो जाते हैं छोटी सी चीज से, कुछ लोग हैं कि वो बड़ी चीज से भी। फिर हमारी जो जरूरतों की वजह से जो हमारे आपस के जो रिश्ते हैं उनमें एक जो फ्रीडम, ओपननेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस वजह से हमारे रिश्ते गड़बड़ होते हैं।
1: जी, यहाँ पर कुछ निजी सवाल भी पूछे हैं हमारे श्रोताओं ने। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दों से लड़ रहा है, बहुत से मुद्दों से वो परेशान है और सोचता है कि अगर उसकी निजी जिंदगी अच्छी हो गई, उसके रिश्ते अच्छे हो गए, तो जीवन में वो किसी भी प्रकार का संघर्ष कर लेगा। एक संदेश हमारे पास है यहाँ पर स्मृति का, जयपुर से, और इनका यही सवाल है कि अपने इन लॉज के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे कॉर्डियल बनाएं, कैसे उसमें प्यार भरें, और क्योंकि इनका मानना यह है कि जो भी कहती हैं, जो भी इनका मंतव्य होता है, इनको डिसएग्रीमेंट ही मिलता है, इनकी बात को नकार दिया जाता है। दूसरा ये कहना चाहती हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके पतिदेव हैं, वो हमेशा फोन पर बिजी होते हैं या फिर वो ऑनलाइन कुछ देख रहे होते हैं या किसी और से बात कर रहे होते हैं या फिर वो थके होते हैं। ऐसे में ये क्या करें? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर डिफिकल्ट है, मुश्किल है,
0: ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब देखिए, सिर्फ इस बात से तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस तरह की सिचुएशन है। देखिए, रिलेशनशिप इज ए टू वे कम्युनिकेशन, अगर दोनों तरफ से ठीक नहीं होगा, और दूसरा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल होना, उसके साथ प्रॉपर फीलिंग्स का इस्तेमाल होना, भावनाएं उसके साथ वर्ड्स के साथ मैच करनी चाहिए, और आपके थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। इन तीनों में सामंजस्य अगर बैलेंस नहीं होगा तो झगड़े होंगे।
1: बिल्कुल,
0: आप इनसे मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, एक तो आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि कहाँ पे यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है। तीसरा, हस्बैंड से जैसे उसमें है, आपको अगर बात करनी है तो आपको कहना पड़ेगा। मैंने कई बार, आप ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ये नहीं करते या मेरी वाइफ ये नहीं करती ये नहीं, अरे आप उनको बोलिए ना, आप उनसे कहिए ना कि आप अज्यूम करके क्यों चलते हैं कि दूसरा आदमी ये सोच रहा होगा या ये कर रहा होगा। आप

0: तो बोलिए ना कि ये आपने करना है
1: जी,
0: इसमें मेरी हेल्प करिए, आस्क फॉर हेल्प। अदरवाइज आप ये सोचें कि आप परेशान हो रहे हैं, कोई आपके पास आके काम कर लेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि मुझे बात करनी है, पुट योर फुट डाउन। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है, कुछ रिलेशंस आते हैं, रिश्तेदार, मैं नहीं कहता सारे रिलेशन खराब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं आपको कुछ ना कुछ बोल जाते हैं और फिर सारे दिन आप परेशान रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस टाइम किसी ने आपको बोला है, पुट योर फुट डाउन उसी टाइम कि आपने बोला क्यों ये, आप इसका कारण तो बताइए ना। और उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि ये मेरी गलती थी या उनकी गलती थी, तो वहाँ पे सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है।
1: जब तक बात करेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
0: हेल्प जब तक नहीं मांगेंगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या सोच रहा है, अज्यूम करके मत चलिए जिंदगी में।
1: आधे से ज्यादा लोग शायद यही करते हैं, वो शायद ऐसा सोच रहे होंगे,
0: बात करेंगे, मैं इतने दिन के बाद मैं फोन करूंगी या करूंगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। अरे करो ना भाई, मैक्सिमम आपका कोई काम है आप करो तो सही ना, मना हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो
1: शायद सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमने बात करना छोड़ दिया है, हमने धारणाएं बनाना शुरू कर दिया है।
0: दूसरा, बात करना भी एक कला है। देखो जिंदगी को जीना एक क्राफ्ट है, इसको कैसे जिया जाए, कैसे मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, कैसे ठीक करना है, ये आपको सीखना, धीरे धीरे जिंदगी सिखा देती है, और अगर आप वैसे सीख जाएं तो बेटर।
1: बिल्कुल बेटर है। और जिस तरह से हमारे कॉलर्स निरंतर हमें कॉल कर रहे हैं, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिज्ञासा हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
2: जी नमस्कार जी मैडम, मैं राजकुमार छावला से सतीश कोशिश का आपको भी नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार सर।
1: जी
0: नमस्कार
2: जी, मेरा सवाल है जी, जैसे कि रिश्तों में बदलाव देखा जा रहा है जी, बिल्कुल आजकल सभी के मुंह से सुनते हैं जी, क्या ये मोबाइल नहीं होता तो हमारा सारा ही काम मोबाइल ने बिगाड़ दिया है, तो क्या ये मोबाइल भी रिश्तों को बदलने में कुछ इसकी भूमिका है क्या जी? ये सवाल था जी।
1: आप क्या कहना चाहेंगे सतीश जी, क्योंकि यही कह रहे हैं ये कि मोबाइल ने आज रिश्तों को बिगाड़ दिया है, और क्या मोबाइल फोन जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि अक्सर हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मोबाइल पर दिखता है। अब घर के बेडरूम में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं, पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, हर व्यक्ति के पास अपना अपना मोबाइल है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, चाहे कुछ देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, लेकिन घर में बैठे हुए साक्षात जो लोग सामने हैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या मोबाइल या फिर हमारे नाते रिश्तेदार जिनके घर हम अक्सर जाया करते थे, चाय पीकर आया करते थे, पकौड़े खाकर आया करते थे, अब वो नहीं रहा, हमने बात करना छोड़ दिया है, क्या उसमें मोबाइल फोन एक अहम कारण है?
0: मैं ये ओनली कारण नहीं है, यानी एक अकेला कारण यही नहीं है। रिश्तों में जो कड़वाहट आती है या रिश्तों में जो गड़बड़ होता है वो उसका एक कारण नहीं होता। हाँ, कई बार जो हमारा सेल फोन है ये दुश्मन है रिश्तों का, लेकिन रिश्तों को बनाता भी है सेल फोन।
1: जी, अब चुटकियों में बात हो जाती है।
0: हाँ जी, पहले आप किसी से बात करनी है फटाक से, आप पहले वेट नहीं करते थे।
1: हाँ।
0: आपको एसटीडी कॉल बुक नहीं करानी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: तो उठाइए आपने बात करिए, और आप कई बार तो लोग सरप्राइज फील करते हैं कि आपने फोन किया और बिना किसी मतलब के फोन किया।
1: हाँ। चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी और वो महीनों में पहुंचती थी, फिर उस जवाब का इंतजार किया जाता था, बहुत खूबसूरत लम्हा हुआ करता था, लेकिन अब आज हमारे पास सुविधाएं हैं और हम उसका लाभ सही तरह से नहीं उठा पाए, तो शायद वो हमारी गलती है।
0: तो देखिए ना, कोई भी एक्सेस में चीज है, आप अगर इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे चीजों की, रिश्तों की मर्यादा को नहीं समझेंगे, रिश्तों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, तो वहां तो गड़बड़ होगा। उसमें चाहे सेलफोन हो या आप वैसे भी तो आप जाके बैठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, तो सेलफोन है, हाँ एक कारण है, आप उसी में लगे हुए हैं, और वो इसी तरह से बनते भी हैं, ये इनकी जो एप्स बनती हैं वो आपको अट्रैक्ट करने के, आप एक बार शुरू हो गए तो आप उसमें चाहे 90% टाइम में कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है जो आप देख रहे हैं, मिलने के लिए आप जिससे गए थे और वहां पे आप सेलफोन यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ है।
1: बिल्कुल, ये तो हमें स्वयं निर्धारित करना होगा।
0: खराब करता है, वो बात अलग है कि रिलेशंस को अच्छा भी बनाता है जब आप फोन करते हो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यूज हो गए इसके।
1: जी, हम पर निर्भर करता है कि हम टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं या फिर निरर्थक ही उसका इस्तेमाल कर अपनी निजी जिंदगी को खराब करते हैं। तो होंगी बहुत सारी बातें आपके साथ, आप अपने संदेश भेजिए 9868107070, इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेज सकते हैं, आपके संदेशों को हम शामिल करेंगे, या फिर कॉल कर सकते हैं 2342108080 या फिर 2342108084, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमें कॉल करें। और दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 एसटीडी कोड लगाना ना भूलें।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त गीता कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन, और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रही हैं बदलते परिवेश में रिश्तों की नई परिभाषा। रिश्ते, हमारे प्यारे रिश्ते, जिनके बिना जीवन ना निरर्थक सा लगता है। लगता है कि अगर वो रिश्ता जीवन में ना होता तो ये जीवन इतना खूबसूरत होता, बिल्कुल ना होता। हर रिश्ता अपने आप में मुकम्मल होता है, अपने आप में खूबसूरत होता है, और हर रिश्ते को हम बनाते हैं, क्योंकि उस रिश्ते में हम बहुत कुछ देते हैं। प्यार होता है, समर्पण होता है, और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी होती हैं, क्योंकि उम्मीदें भी रिश्तों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। तो सतीश कौशिक जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज आपके जरिए बहुत सारी बातें, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिस पर हम कई बार सोचते ही नहीं। जैसा कि आपने कहा कि रिश्ते ही तो हैं, तभी तो जीवन है, और अगर रिश्तों के बारे में ना सोचा जाए, उनको संजोने के बारे में ना सोचा जाए, तो जीवन खूबसूरत कैसे नजर आएगा। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, और हर कोई यही चाहता है कि उनको उनकी समस्या का निदान मिले। हर व्यक्ति कहीं खुश भी है तो कहीं अपने रिश्तों में संघर्ष भी कर रहा है। हमारे पास एक संदेश है मेहताब खान का, और ये मादीपुर से इन्होंने संदेश भेजा है। ये कहते हैं कि इनको भी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हैप्पी होगी आपकी लाइफ, अगर रिश्ते अच्छे होंगे, आप खुद बहुत महसूस करने लगेंगे कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है मेरे पास, चाहे फिर किसी चीज की कमी ही क्यों ना हो। और ये कहते हैं कि इनको अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं, और अब इन्होंने उम्मीद करनी छोड़ दी है, क्योंकि अपनों से इनको प्यार नहीं मिलता। इनको यही लगता है कि नहीं मिलेगा प्यार, ऐसा क्यों? इस मुद्दे से जुड़ी एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन जब मन में व्यक्ति की ये बात आ जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो निश्चित है कि व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपनों के साथ, क्या करना चाहिए इस व्यक्ति को?
1: पहली बात तो ये निराश होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। तो पहली बात तो निराशा छोड़नी होगी कि भाई मेरे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। दूसरा ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रिश्ते आप अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फैमिली के साथ

0: इश्यूज हैं, पहली बात तो उनको एक पेपर पे नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 करके उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और एक एक प्रॉब्लम को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, और कोई ना कोई उनसे जो परिवार वाले हैं उनसे आप उसके बारे में बात करिए। रिश्तों में जब कड़वाहट आती है या रिश्तों में जब फ्रिक्शंस आ जाती हैं या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो सबसे पहले कैजुअलिटी जो होती है ना, वो है हम बात करना बंद कर देते हैं। उस बातचीत को जो आपने बंद की है उसको दोबारा से आपको चालू करना पड़ेगा, और धीरे धीरे सारी पूरी प्रॉब्लम्स की गठरी को एक साथ मत खोलिए ना, थोड़ी थोड़ी उसमें से निकाल के प्रॉब्लम्स और उसके साथ करिए। और तीसरा, जो अभी हम आप और मैं बात कर रहे थे कि हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरे ये सोच रहे हैं, यानी हम दूसरे दिमाग में क्या सोच रहे हैं हम वो सोचना, अरे वो तो ऐसा सोच रहा हो, क्या पता नहीं सोच रहे हो, क्या पता वो भी बैठे हो ना आपके लिए कि भाई आप आए और हम लोग बैठ के बात करें और सुलझा लें इन चीजों को। और जब आप सुलझाने लगते हैं तो आपको सुनना भी आना चाहिए। तो आप ये देखोगे कि जब लड़ाइयां होती हैं घरों में, चाहे वो सास बहू की या किसी की भी हो, लड़ाइयां होती हैं, तो जो प्रेजेंट टॉपिक है, जो अभी की प्रॉब्लम है, आज की जो प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन नहीं होता, लड़ाई उस पर नहीं होती। तो आप जो पुरानी पुरानी चीजें हैं उनको उठा के अपने सामने ले आते हैं, आपने उस टाइम में मुझे ये कहा था, आपने मुझे ये कहा था, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। पहली बात तो एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, दूसरा आपस में बात करिए, तीसरा आप अज्यूम मत करिए कि दूसरा क्या सोच रहा है, चौथा आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से बोलिए। एक सब्जेक्ट भी है इस पे, कम्युनिकेशन डिजाइन, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, उसका डिजाइन होता है। जैसे हम ही को ले लीजिए ना, अभी हम रेडियो प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यानी हम अपने जो सुनने वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली, आपके सवालों के अकॉर्डिंगली हमारा कम्युनिकेशन है, हम उसी तरह से उसको मोल्ड कर रहे हैं या उसी तरह के तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो उसका एक डिजाइन बनाते हैं। पहले दिमाग नहीं जल्दी जल्दी बनता है, तो उसी तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके जो मुद्दे हैं, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप लिख लीजिए अपने पास, और फिर धीरे धीरे करके, तो उससे क्या होगा कि आप मुद्दों से बाहर नहीं जाएंगे, मुद्दों से बाहर गए तो फिर आपका सुलझाव नहीं हो। तो आप करके देखिए,
1: रास्ता मिलेगा,
0: रास्ता मिलेगा।
1: एक बात और जानना चाहूंगी, रिश्तों में देने से पहले अपने आप से बात करना कितना ज्यादा जरूरी है? हम ये कह रहे हैं समय निकालिए, अपनों से बात कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, व्यक्ति अपने आप से ही बात नहीं कर रहा है, अपने आप से ही ना खुश है, पहले क्या करूं?
0: ठीक है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना। देखिए ना, कोई आदमी जिसके पास वो चीज नहीं है, जिसके पास खुशी नहीं है, तो दूसरों को खुशी क्या देगा? तो पहले तो आप अपने पास रखिए ना उस चीज को। अगर आप किसी को प्यार देना चाहते हैं तो पहले अपने आप को प्यार करिए ना। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना शुरू करिए, तभी आप किसी के साथ प्यार से और ठीक से बात कर पाएंगे।
1: जी, उम्मीदों पर दुनिया चलती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है। डॉक्टर राकेश पुनिया पानीपत से हमें संदेश भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर रिश्ते, चाहे भाई बहन का हो, पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का, अपने माता पिता से, दोस्तों का, एक दूसरे से, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं ये जो उम्मीद है ना, ये कड़वाहट पैदा करती है। उम्मीद करना तो अच्छी बात है, ये तो प्रेम की निशानी है। क्या उम्मीद से ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं तब परेशानी होती है, या उम्मीद करना ही परेशानी है?
0: डॉक्टर पुनिया जो हमें कह रहे हैं वो ये है कि रिश्ते मतलबी हो गए।
1: जी,
0: तो रिश्तों में उसमें ऑनेस्टी और ओपननेस, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो वो रिश्ते नहीं रह सकते फिर वो। और जहाँ पे आपको पता लग जाता है, आप ओपनली बात करिए ना कि आपको कोई जरूरत है। रिश्तों में ये भी तो है ना, जब अच्छे रिलेशन है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा रिलेशनशिप, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो एक्सेस हो जाए, यानी कोई आदमी सिर्फ जब मतलब हो तो तभी फोन करे, तो आप थोड़े दिन के बाद उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं।
1: बिल्कुल समझ में आने लगता है कि ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा।
0: हाँ, तो ये बैलेंस बना के आपको रखना पड़ता है, यानी एक नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्किंग में अगर आप हर समय मतलब से नेटवर्किंग करते हैं तो वो नेटवर्किंग नहीं कहलाती।
1: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि आप रिश्ते बनाइए। अक्सर आज की दुनिया में, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगी सतीश जी, तो लोग नेटवर्क्स बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने रिश्ते बनाना छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान ही कहूंगी कि मेरी फ्रेंड लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, पर असल में मेरे दोस्त कितने हैं मैं खुद भी नहीं जानता।
0: देखिए, बिजनेस में कहा जाता है रिलेशनशिप इज बिजनेस। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, वो रिलेशन बहुत चीजों से बनते हैं, आपके व्यवहार से बनते हैं, आपकी बातचीत से बनते हैं, आपके परफॉर्मेंस से बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिलेशनशिप को बनाती है। एक ट्रस्ट भी वहीं पे आता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ओपननेस, ये सारी चीज वहीं से आती है। तो बिजनेस में ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप बिजनेस। तो अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली बिजनेस आपके पास आएगा।
1: जी, उससे महसूस होता है कि आप कितना और कितने प्यार से आचार व्यवहार करते हैं, कैसे किसी को अपना बना लेते हैं, और शायद ही निजी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है।
0: देखिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए ना सब जगह, चाहे पर्सनल रिलेशन हो या बिजनेस रिलेशन हो।

0: अपनी वैल्यू से ज्यादा जब वैल्यू उनको करेंगे तो तब देखिए रिलेशंस कहाँ खराब होते हैं।
1: जी, इसी संबंधित यानी कि जब एक पुरुष और स्त्री के रिश्ते की बात की जा रही है और फैमिली सिस्टम से पहले एक पति पत्नी का रिश्ता महत्वपूर्ण है, जिस पर आपने बहुत अच्छे विचार अपने रखे। यहाँ पर पैंथर तोमर यहाँ पर संदेश भेज रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, उनका संदेश यही है, सवाल यही है, जानना चाहते हैं कि आज डिवोर्स रेट्स जो है बहुत हाई हो चुके हैं, हर दूसरे तीसरे घर में आप यही सुनते हैं कि यहाँ पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे सामंजस्य दोनों को बिठाना चाहिए कि जिससे कि डिवोर्स की नौबत ही ना आए। एक बहुत ही गहन मुद्दा है ये, शायद व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति को काम करना होता है, हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं लेकिन कभी कभी किसी का सुझाव आपकी दिशा बदल देता है।
0: नहीं देखिए, मैं मानता हूँ कि इस तरह का लगता है कि हम लोगों को, मैंने कहा ना कि दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरह से मिलके अपनी जिंदगी को ठीक से चलाएं, उनकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स हैं, लेकिन फैमिली उन दोनों को चलानी है, लेकिन वहां पे इतने सारे इश्यूज, इतने सारे मुद्दे आ जाते हैं बीच बीच में कि कई बार उनको अपनी जिंदगी चलाने में दिक्कत होने लगती है। सेकेंडली देखिए, दुनिया में तीन चीजें बदल रही हैं, आपका एनवायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है
1: जी,
0: है ना,
1: और उस पर नियंत्रण नहीं है हमारा,
0: टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, बाय द टाइम आप एक सेलफोन खरीदते हैं दूसरा वर्जन आ जाता है
1: जी,
0: है ना। तीसरा है ह्यूमन बीइंग्स, तीसरा वो तीनों मिलके चलते हैं ना ये, तो ह्यूमन बीइंग्स तो उस स्पीड से नहीं चेंज हो रहे, वो वहीं पे है। अभी हमारे जो पुराने बिलीव्स हैं, पुराने सोचने के तरीके हैं, पुराने चीजों को देखने के तरीके हैं, लड़का ये होना चाहिए या लड़की ये होनी चाहिए, वो तो चेंज हो रहे हैं ना। पहले तो जो लड़की थी दे वर नॉट इंडिपेंडेंट ना, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब डिपेंडेंसी है, आप इंडिविजुअलिटी भी बना के रखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, तो उसमें आपको सोचना तो पड़ेगा, और उसमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। देखिए ट्रस्ट एकदम शादी करने से एकदम ट्रस्ट बिल्ट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, तो उसको टाइम दीजिए ना रिलेशन को, और उसको पनपने के लिए टाइम दीजिए, और दोनों परिवार जो लड़का लड़की वाले हैं दोनों का जो ट्रस्ट पनप रहा है उसको सपोर्ट करिए, ना कि उसमें मेन में एक मत निकालिए, लेट देम लिव देयर लाइफ प्रॉपर्ली ना।
1: एक दूसरे को समय देने के बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और एक दूसरों की खामियों को फॉरगिव कर दें तो शायद जिंदगी आसान हो जाए।
0: खामियां उसमें देखिए ना, खामियां क्या हैं, खामियां अगर ऐसी है कि पूरा गड़बड़ी कर रही है तो बैठ के बात करिए ना कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं ना, हम ये नहीं समझते कि अगर इनके रिलेशन बढ़िया होते हैं
1: तो ऑटोमेटिकली
0: हैप्पीनेस विल कम टू अस, खुशियां हमारे पास ही आएंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए करके
1: जी, निश्चित ही जैसा कि सतीश जी ने कहा कि कोशिश तो कीजिए, कुछ तुम चल दो कुछ हम चल दें, और इसी से परिवार बनता है, रिश्ते बनते हैं। एक संदेश और आया है हमारे पास डॉली का, और डॉली दिल्ली से लिखती हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी बखूबी निभाता है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से आपको परेशान करने लगते हैं, आपको लगता है कि आप इतना कुछ दे रहे हैं अपने रिश्तों में, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसके बदले आपसे ये पूछा जा रहा है तुमने किया तो क्या किया, किया तो अपने लिए किया, तो जब आप पे फिर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे या आपको ये लगने लगे कि अप्रिशिएट तो दूर की बात है कोई समझ भी नहीं रहा है, तो ऐसे में मानसिक संतुलन व्यक्ति का बिगड़ने लगता है, और इसी वजह से शायद आज मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज जो हैं हम देखते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे।
0: अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वे गाने की, देखिए रिश्तों को आपको पेड़ पौधों की तरह से उनको सींचना पड़ता है, उन पे काम करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कुछ पौधे सूख जाते हैं, तो इसी तरह से जो रिलेशंस हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे धीरे ड्राई होते रहते हैं और एक दिन एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो उनको छोड़ना ही बेटर है, यानी जिसको चलाना ही मुश्किल हो जाए या तो उसको खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दो आप।
1: बिल्कुल, आपने जहाँ पे जिक्र किया कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए
0: हो जाए हम दोनों, तो उस रिश्तों में जिसमें जान नहीं है और आपको लगता है कि अब इसमें जान भी नहीं डाल सकते तो छोड़ दो उसको, अपनी जिंदगी चलाओ आप
1: जी, लेकिन कभी कभी जिंदगी के इस मोड पर होते हैं, उन रिश्तों के साथ होते हैं कि जिन्हें छोड़े नहीं बनता लेकिन उसके लिए प्रयास निरंतर किया जा सकता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं
0: जा सकता है, और अगर आपको जहाँ पे भी थोड़ी होप नजर आती है तो कोशिश करते रहिए
1: जी, निश्चित ही
0: रास्ता करने वालों की हार तो होती नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही रास्ता मिलता है, और आप जैसे गुणीजन निश्चित ही हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, और कभी कभी हम अपनी सीख से नहीं सीखते, अपनी एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाते जितना हम कभी कभी किसी के कहने भर से अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल लेते हैं, अपनी जिंदगी की राहें बदल देते हैं।
0: ना एक बहुत अच्छी सी कहावत है, द वाइज आर दोज हु लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स।
1: क्या बात है
0: ना, दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख जाएं तो आपको गलती करने की जरूरत नहीं है।

0: कारणों को आप एक एक करके खत्म कर देंगे तो आपके रिलेशन अपने आप बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन अब उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर समय जीतने की कोशिश मत करिए ना, दूसरे को भी सुनिए। और सुनना, एक्टिव लिसनिंग, जो आप ध्यान से सुनना किसी को, ये बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: पहले सुनिए आप उसको। आपको सुनते सुनते ही पता लगेगा कि अरे ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं कुछ भी। उसके जितने भी मुद्दे हैं उनको सुन के और फिर एक एक करके आप अपनी बात बोलिए। हो सकता है कि अगर चार मुद्दे हैं, दो पे तो हम ये सोच ही रहे हैं ना, तो दो तो खत्म हो गए आपके, फिर दो के बारे में फिर से बात करिए।
1: बिल्कुल,
0: और सही वक्त पे सही तरीके से आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से बात नहीं करेंगे, वो मैंने कहा ना कि आपके शब्द क्या हैं, आपकी फीलिंग क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, अगर तीनों को आप संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो गई होगा।
1: कभी कभी जटिल से जटिल व्यक्ति को भी हम मना लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि हमारा संवाद कुछ इस तरह से होता है।
0: प्रॉपर टाइम पे अगर मम्मी गुस्से में है तो आप बच्चा उनसे मनवा नहीं सकता। अगर मम्मी, देखा ना अपने बच्चे कैसे करते हैं, कि जैसी बढ़िया मूड में हुई तो मम्मी से फटाक से आपका अपना काम करा लेंगे।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने यहाँ पर। तो हमें उन लोगों को हमेशा अपने सर आंखों पर रखना चाहिए जो हमारी बात मान लेते हैं, जिनसे हम बात मनवा लेते हैं, लेकिन उनकी बात मानना भी हमारा फर्ज बनता है, तभी रिश्तों की खूबसूरती बढ़ेगी। एक संदेश हमारे पास आया है, उन्होंने यही कहा है कि आपकी बातों से इन्हें एक बात तो मालूम हुई, वो ये ही कि रिश्तों को अगर बचाना है तो संवाद ही एक सेतु का काम करेगा और संवाद के माध्यम से बिगड़ते रिश्तों को बचाया जा सकता है। ये संदेश
0: बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, ये संदेश हमें नंद त्यागी ने भेजा, जय नंद त्यागी ने मोदीनगर से। एक संदेश बहुत ही खूबसूरत संदेश है, कहते हैं कि माफ करना, माफी मांगना दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। माफ करने वाले को लगता है कैसे माफ किया जाए और माफी मांगने वाले को लगता है कि कैसे माफी मांगे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ईगो आ जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये लगता है कि मैं क्यों, वो क्यों नहीं, तो कैसे माफ करें, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं,
0: जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि माफ करने वाला, माफ करने वाले को जिसको आप माफ कर रहे हैं उससे डबल खुशी मिलती है। तो आप माफ तो करके देखिए ना।
1: बिल्कुल, और हो सकता है कि एक बार आपने माफ किया, एक बार आपको माफी भी मिले, ये तो दो तरफा है, गलतियां सबसे होती हैं।
0: आप सुलझे, वो बातचीत करके आप सुलझा लीजिए ना, आपको सॉरी बोलना है, आपने देखा कि आपने गलती की है, आपको पता है आपने गलती की है, तो सॉरी बोलने में तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए फिर, यानी इमीडिएटली बोलिए।
1: माफी मांगने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि माफी मांगने के लिए भी दिल शायद बहुत बड़ा करना होगा, माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल करना होगा।
0: अरे आप एक बार
1: कोशिश
0: करें,
1: खुद ब खुद रिजल्ट सामने आएंगे।
0: और क्या
1: क्या बात है,
0: यानी जो चीज है, जो माफ करना है, जेन्युइन है तो माफ कर दीजिए ना।
1: बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगी कि आपके अनुभवों से आज हमने आपकी ही बातों पर सील लगा दी कि ऐसा तो होता ही है और ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, टेस्टेड एंड प्रूव्ड।
0: देखिए गीतिका जी, जिंदगी जो है ना हमारी, ये जो पूरा ह्यूमन बिहेवियर इतना विचित्र है कि आप ये नहीं कह सकते कि 5 मिनट के बाद किस तरह से बिहेव होगा, किस तरह से आपको इमीडिएटली, आपने गया गुस्से में होगा कोई, आपको पता लगा कि उससे तो प्यार से इससे ज्यादा तो कोई बोलता ही नहीं है।
1: जी,
0: तो आप अज्यूम करके मत चलिए।
1: बिल्कुल,
0: हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड, जी हाँ, सक्सेस कम्स थ्रू अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही आपने इतनी क्या कहते हैं ना कि ज्ञान वर्धक बातों के साथ साथ द मॉरल ऑफ द स्टोरी आपने पूरे सार दे दिया आज के हमारे स्टॉक का। एक यही संदेश हमें दीप्ति ने भेजा गुड़गांव से, और उम्मीद है कि आप समझ गई होंगे कि माफी देना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच लेते हैं, जितना हम उसको जटिल बना देते हैं। बहुत अच्छा आपको हमारा प्रोग्राम लगा। मोहित काम्बोज सहारनपुर से संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉली ने भी हमारे कार्यक्रम की बहुत तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉली। संदेश भेजने वालों में एक संदेश आया है एके पांडे का, और ये संदेश है मध्य प्रदेश से कि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा हो, खासतौर पर कोई अपना, और आप उसे टोक दें तो वो नाराज हो जाता है, वो हमारा जवाब नहीं देना चाहता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को जागृत कैसे किया जाए, रुको पहले मेरी बात सुन लो फिर मोबाइल देख लेना, ऐसे में क्या करे कोई व्यक्ति?
0: एक बहुत अच्छा इंग्लिश का वर्ड बना हुआ है, एक्सक्यूज मी, यूज करिए
1: जी,
0: और फिर उसके बाद
1: संवाद कीजिए, और संवाद करते हुए उचित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए,
0: और अगर उसकी बात थोड़ी सी बची हुई है तो उसको खत्म होके फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना आप।
1: बिल्कुल, एक संदेश और है हमारे पास आया है रेनू का, और ये कहती हैं कि अपने इन लॉज के साथ, अपने सिस्टर इन लॉ के साथ ये काफी मतभेद महसूस करती हैं, इनके जो पति देव हैं वो भी इनको नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की इनसे दरख्वास्त की जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे में कहीं ना इनको लगता है कि इनके बच्चे की लाइफ जो है स्पॉइल हो रही है, क्या करें। बहुत ही अहम संदेश है, बहुत ही अहम सवाल है यहाँ पर, बहुत सी महिलाएं जो है इस तरीके के प्रश्नों के साथ हमारे सामने आती हैं, और हर

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की पहली तिथि और दिन है बुधवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री राम सिंह, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री अमोल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लवसंग तुप्तन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशु वंगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आपसे कुछ ही पलों में यानी दोपहर दो बजे आप सुन सकेंगे मीटे न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन

0: उनके रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरत

0: मंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में।

आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आइए सुनते हैं देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भी आपने सुना देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त हुआ। मीडियम एप के मीटर बैंड पर आपके सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3 बजे हैं और प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं मायूख हजारिका के स्वर में चंद असमिया आधुनिक फिल्मी नगमे। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

शोधव्य पान ले रहे थे मायू खजारिका के स्वर में चंद असमी आधुनिक फिल्मी नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के मिस कर्मा ड्रमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर दिए गए चंद संदेश।

0: आकाशवाणी तावांग से प्रसारित डेनी कार्यक्रम मेरी बात में अब सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कर्मा जेमा, पीएम श्री चेनवी तावांग, कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्र। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है संतुलित आहार के लाभ है। किसी ने बहुत सही कहा है कि थका हरा तन मन हो जाए, थका हरा तन मन हो जाए जब संतुलित भोजन पास न आए। हरी सब्जियां, फल और दालें जीवन में नई ऊर्जा ले आए। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के सभी पोषक तत्व मिले हो। अच्छा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है या हमें रोज के काम करने और पढ़ाई करने के लिए ऊर्जा देते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए संतुलित आहार विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। सही आहार से हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि होती है और हमारा दिमाग तेज रहता है। जब हम अच्छे खाते हैं तो हमें पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होती है और हमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। संतुलित आहार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। आज के समय में जब तरह तरह की बीमारियां फैल रहे हैं तब एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमें स्वस्थ में मदद करते हैं। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हम अपनी उम्र के हिसाब से कैलोरी लेना चाहिए। बढ़ते बच्चों को सादा और बड़ों को संतुलित कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। साथ ही सादा मीठा और तली भुनी चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारा हृदय और मांसपेशियां मजबूत रहें। अच्छा भोजन हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं और वजन को नियंत्रित करता है। इससे हमारे त्वचा, बाल और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। पिंकी बबली और उमंग भोजन करते देखो संग, पिंकी खाती गजर आलू, बबली खाती तीखे तमोलू। पालन पनीर उमंग को बाई, तीनों ने मिलकर खीर भी खाए। पौष्टिक आहार तुम भी खाओ, अच्छा सेहत तुम भी पाओ। संतुलित आहार से बच्चों और किशोरों में लंबाई और वजन का सही विकास होते हैं। इससे कफ्स, गैस और पेट दर्द जैसे समस्या कम होती है। इससे सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से भी बचाव होती है। संतुलित आहार जीवन को गुणवत्ता में सुधार कर लंबी उम्र में सहायक होता है। हमें हर रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। पोषक तत्व भरपूर आहार बेहतर नींद लाने में योगदान देते हैं जिससे आराम में मदद मिलते हैं। रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर से दूर रहे। रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर से दूर रहे, पौष्टिक खाना खाए, तंदुरुस्त जीवन जिए। जंक फूड का परित्याग ही बीमारियों को जड़ से मिटाए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम रोज सही समय पर स्वस्थ भोजन खाए, जैसे फल सब्जियां और घर का बना हुआ खाना खाए, तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम रोजाना संतुलित भोजन करें तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। इसलिए हमें जंक फूड से बचकर पौष्टिक और संतुलित भोजन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
1: श्रोता, भी आपने सुना कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री चेनवी तावांग की मिस कर्मा डेमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर दिए गए चंद संदेश। श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3:35 हुए है और अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को आरंभ करते हुए कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की युगल आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और FM फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा लीजिए पेश है पाठशाला फिल्म।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं फिल्म दावत ए इश्त से शालमाली कुलकर्णी के आवाज में। इस गीत के गीतकार है कौसर मुनीर तथा संगीतकार है साजिद वाजिद।

जावेद बशीर की आवाज़ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, बाघ मिल्खा बाघ फिल्म से। शफरचना परोसन जोशी के है तथा धुन शंकर एहसान लॉय का।

श्री अघोषाल और सोनामा बत्रा की युगलवाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया। आई हैड लव स्टोरीज फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे कुमार तथा संगीतकार थे विशाल शेखर। श्रोता इस समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। गीत मंजरी कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं ब्रेक के बाद फिल्म से विशाल ददलानी और अलिसा मेंडोनका की युगलवाजों में। परोसन जोशी के लिए इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

Aching or Clinton Sirizo की आवाज़ों में श्रोता भी अपने आनंद लिया फ्रम बॉडीगार्ड से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे नीलेश मिश्रा तथा संगीतकार थे प्रीतम। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं यारियान फ्रम से अरिजीत सिंह के स्वर में, शेफ रचना इर्शाद कामिल के है तथा धुन प्रीतम का।

यशोधमती वस्लम के गाय फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो केसी नकमी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है आर के सूर्यनारायण से राग कृष्णवाणी पर वीणा वादन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे आर के सूर्यनारायण से राग कृष्णवाणी पर वीणा वादन। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या 4:45 पर सुनिएगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी है, अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कोशिश की सराहना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जापान के प्रधानमंत्री सनई तकेची आज शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से आह्वान किया कि वे 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में मदद करने के लिए समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फ्रांस की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रही है, जहां वो कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ग्रीस के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। सरकार ने उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक साइकिल देने की घोषणा की है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला। विकसित भारत रोजगार और

का मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्य में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। इस भूकंप में बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। इस अभियान के अंतर्गत भारत वेनेजुएला के लोगों की सहायता के लिए मानवीय राहत और सहायता प्रदान कर रहा है। जून में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 23% से बढ़कर 22 अरब से ज्यादा हो गई, जबकि पिछले महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 20% बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आज जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में यूपीआई ने हर दिन औसतन लगभग 757 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। यूपीआई अब यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशियस और श्रीलंका समेत 8 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, जिससे ग्लोबल फिनटेक में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से गांव के 20 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं और धान के खेतों, खरीफ फसलों और पशुधन को व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे कई परिवार तबाही से जूझ रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने नीपको कॉलोनी में स्थापित स्थायी राहत शिविर का भी दौरा किया। कई राज्यों में हवाई और जमीनी स्तर पर क्षति आकलन पूरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री आज शाम गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकेची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। यह प्रधानमंत्री तकेची की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें सशक्त करने का अवसर देगा। इस दौरान क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और प्रतिबद्धता समावेशी और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती तकनीक के दौर में सीखने की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 1268 छात्रों को डिग्री प्रदान की और 56 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से फ्रांस की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि श्रीमती सीतारमण फ्रांस भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी। वे एक्स एंड प्रोवेंस में फ्रांस के वित्त मंत्री रोनल्ड लेस्क्योर

के साथ भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद ईएफडी के सह अध्यक्षता भी करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि ईएफडी के अंतर्गत दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अधिक द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंधों और भी मजबूत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेश अंशदान अधिनियम एफ सी आर ए टू

0: FCRA पोर्टल के माध्यम से दान प्राप्त करने वालों को होने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो, नीति पारदर्शी हो और प्रौद्योगिकी को अपनाने की मानसिकता हो तो ईमानदार लोगों के लिए शासन के सभी रूप आसान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है तो देश की सुरक्षा लगातार बढ़ती है। यूरोबैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की। यह पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि ग्रीस में UPI के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। लगभग 40 वर्षों के अपनी करियर में एयर मार्शल दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण अभियानों और अभ्यासों में भाग लिया। इन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। केंद्र सरकार ने आज से लागू हुए विकसित भारत ग्रामीण विकसित अधिनियम 2025 विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत बढ़ी हुई श्रम दरें अधिसूचित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम दर में वृद्धि की गई है। पहली बार प्रतिदिन 300 रुपये की अंतरिम आधार मजदूरी दर लागू की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी श्रम दर 300 रुपये से कम नहीं होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Hage Ani. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the unprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched on this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. The unified payments interface transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month. According to data released today by the National Payments Corporation of India, on an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. UPI is now live in more than 8 countries, including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Increased wages under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. Goods and Service Tax GST has strengthened India's vision of Ek Bharat, Shrestha Bharat over the past 9 years. It has brought transparency, accountability and economic growth through rationalized tax rates and standardized procedures. Launched on 1st July 2017, this day is marked as a historic achievement in India's reform journey. GST subsumed

उद मनु चु युग मन सा उसमें दिजिक से मन चे ने चे मनु चु युग निम्बो इतना तो सेवा जे सुख निम्बो लो ने ना निम्बो ने ना खाते हैं वो तो वाले ला सेवा जे सुख निम्बो लो ने ना कोंड्रो कोंड्रो ने वो चे वाले ला कोंड्रो ने वो चे बेचे ने ना चिक मेंशन मत इसे ने ना शेडांग ने वाले ला शेडांग डांग ने ना कौन से कुछ शे ने ना निंग थक बने चिक ता खाका मारो कौन से वो तो माया वो सिम्टिंग ने कौन से कुछ शे शे ने डांवा ने वो चिक नहीं चे यहाँ हम क्यों नहीं ना बेचे ने का ब्रेव ब्रेव का कौन्ड्रो ने यहाँ ब्रेव ब्रेव का शेडांग यहाँ ब्रेव ब्रेव का छोवा छोवा ने तो ब्रेव उतना काम वो तो ना थी ता सोबचे सुख ने बोलो ने ना शेडांग कौन्ड्रो ने वो चिक ये ने बोया ता शेडांग कौन्ड्रो ने बो ये ना कौन्ड्रो ने वो चिक कदिन दिन नो लो ने ना ना दाच कौन्ड्रो ने ना सभी ने मो तो सुन ने को ने ना कौन्ड्रो चे वरे ला कदना अगर दुछा कर थी मद्रास में वरे ला दुछा ने ना कदिन थे लो ने ना चला सर्वा आईफोन वो तो थी का पे आया ना शुस में वरे ला फोन देशनो में काम बुश फोन से शिनो में वरे ला शर्ब में ना में काम बुदा कदबु ने काम बु फोन से मिशन में सुवा मन में वरे ला इचिक से तो फोन सर्वा दे कंपनी से शोंबुल आ ना ता चे चे कैप्टा या उनको कैमरा का स्पेशल थी केजो नोशो ने वरे ला पर छे बुर यांग चिक म्यूजिक ये नो ये ना उदिन दे नोशो ने कैप्टा नंबर दाबो दे या चिक अरिसिम ना जे तकता नोशो बिर कैप्टा एडवर्टाइजमेंट या या तो मोसो ये ने सेमने का कोसो दे शों रां रूप नो ये ना रूप रूप से ने कोसो रूप नो ये ना मिने में न्यार कोसो वरे ला EMI बी कोसो आ थापशी ना में ना सो या या फोन दे ने ता ने ये प्लान ना दा चे ता फोन से छापा ये मोद से छापा ये रंदा उन्हीं से समना सेमने का समना तो समलोग ये जे चुमी ये जे नम्दो ये वो चेके दा फोन के यंदेन उत फोन जे ये शे थाबो ये ना यंदेन उत गो तो ने बैटरी नंबर दाबो ने पर्चे नंबर दाबो ने थी ने सुम ने उत शे नम्दो नम्दो से जो दाबो ये ना नम्दो से जो या सेमने का जो या उत तकता थे मा तो मनो ने मांशु और यंदेन मांशु तो जो जो सुजे नम्दो से जो बा ने ता जो सरो शुक जे सिम बिना था छु दिया ता निशे गोसुरा इन ने ता मैंने मैं कहीं रूप शर को सुरे जो पुले नॉन को सुरे जो दांसे मावो सिया ने फोन दे तब दे तब फोन तब सारे शुक्र जब लांग ना दा जाता शिनो नो में आ जामा जो वो द नंबर दा मिशन न्यारे में भी वाले ला टेबल से जो न्यू ने मांग जो रे थी न्यू उत्से जंग आ दांग या दांचे को वो स्क्रैच लगे ना तो हमारे शुन्योरे सेम का न्यू सुन्ये ने न्यू को न्यू जो न्यू तब लांग थी गई नहीं गई सुम गई अब उस सिया लो न्यू ना तब ना छक बचे हलम न्यूंशु गया न्यूंशु गए बोल ता नाम तो माया के में ये जो लेती तुम लेती नहीं गए बोल ता वो ये जो ब्रेक ब्लांक थी लो मगनो इन्हें ता ना छक बचे ता वो छक बस सिया दो लो ये ना छक बने कौन रो नहीं का शा सिया दो लो ये ना मुबिनेजु ये ना चला बिनांगे बिना तो छां वो तो दी ना चला बिनांगे नंबर तबे छाते नो में नंबर तबे छा ये ना बिना लिव छाते और ला ये दो वो छाते मैं दो वो तो ये ना बिना जेबे की छाते वो छाचे परसेंटेज वो तो टेन वो तो मनु ये ना ये चिंता नम दो से चु या हंड्रेड चु टू हंड्रेड और क्या दे या मांसु पर चु ये वो नम दा ता शुक जे प्लांक हार दे गए बोल ता नम दो से चु ये वो जो मारा मारा मारा मार के बोल बिना ओरिजिनल जे चला बिना ओरिजिनल से ये तोंग बोल ता सेम से तो चा मनु में और ला ये चा बच मनु बोल ता चला जी ये शुम कोसुमन ता ना रुबियो ते तोंग या ब्रे ब्रे का जो बजे उस उदन रेड में ता वो चा बाग लगाई में तो कौन्ड्रो जे वो दोचो तक बाते दोचो ये ना अब जे कौन्ड्रो जे सिया तो लो ये ना रांसे मिशनो मिथी नो ये ना तो मी रांसे मिशनो मिचे मिशन को सु जुम्सेन तो थी नो ये में वाले ला थी ये ना बी नाशा ने बाया हुए ना बी नाशा तो जाते या हुए ना तो जुम्सेन सी ने आर काम बस जुम्सेन थी नो मंदा तो बिना मिशन को सु जुम्सेन जे कैसा तो हो सु 10% हो दो दे किलो हो सु किलो ची हो दो दे ना तो कौन्ड्रो से कौन्ड्रो ये जे यां नम दो से जुए दो मंदा नम दो से जुए बी ये से सिम मो सु जुम्सेन वाले ला बी ये से तो जा उदन या को सु जुम्सेन से लो ने लारो ना से सिम नम ना ना से थी ने दे जे कौन्ड्रो जे नम दो जुए बोल तो तों जु मी जे ता जे सिम ने आ ये दो मे हों आ कौन से जो उदन माशु माशु माशु माशु माशु गे या ता मा जे कौन्ड्रो ने वो जे ला कौन्ड्रो ले गा या तां थी रा ता तो जा ने कौन्ड्रो ने गा प्लेन में ता शुक जे कौन्ड्रो जे मनु शोंग बोल या मिटेशन ना ने उत मो दो से हों से लो सम गो से ल रे दो मे ओरे ल रे गा खे ने उत तो जा ला या लो से रा सो सो दि मे से गो सो ला तो कौन्ड्रो ने तो जा ने गा ले गा या दान थी ने मे ओरे ला ता सो बा ने गो छि ता उत से कौन्ड्रो गे

동행이 동행이나 오늘도 티셔츠 공부시나 그래도.

मीडियम है, फिक्स सतानवे दशमलव दो मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का दावंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। अप्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनिएगा दैनिक शेदुलर में गेलोंग जंपा वांगचू और साथियों से जोरवा चुटुक का शेष भाग। तत्पश्चात आप सुन सकेंगे यानी सिटिम जंगमो और यानी येशी लामू से ग्यावे जप्तन खिन रिमुचिक शब्दन न्यूनिक मनलम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज शाम 7 आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनेगा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर तथा शाम 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आज रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आज रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं अब हम आपको कल यानी 2 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। हमेशा की तरह हमारा कल का सफा आरंभ होंगे कल दोपहर 2:00 मीठी न्यूज के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत जगजीत सिंह के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत अरुण जमैतिया जसवा हालम प्रियंका और साथियों की आवाजों में चंद कोकपूरक आधुनिक नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच। कल दोपहर 3:50 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे फिल्म हीरो बंती से मोहित चौहान के स्वर में कपूर एंड सन्स फिल्म से आर्को की आवाज।

में तमाशा फिल्म से मोहित चौहान के सुर में, रॉय फिल्म से मीट ब्रोस अंजन और कनिका कपूर की आवाजों में, सनमरे फिल्म से अरमान मलिक पालक मुच्छल और अमाल मलिक की आवाजों में, रईस फिल्म से हर्षदीप कौर के सुर में, गोलमाल अगेन फिल्म से नीरज श्रीधर और सुकृति कक्कर की आवाजों में, टाइगर जिंदा है फिल्म से अतीफ असलम की आवाज में और जफरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में चंद नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनिएगा शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल संध्या 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 आप सुन सकेंगे रोजाना की तरह मुनपा कार्यक्रम के अंतर्गत नामदर लेम। 5:30 पर सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में श्री लव संग तुप्तन से। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा दिंग दुई समा। कल शाम 6 लेरिम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा तोफन कॉलोनी के अमल हम ड्रामा और साथियों से गंजक सुम्पा गंदन लगेमय ग्यावेश यप्तन लामा छेपा और गोवा मल्लम। कल शाम 7 सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता में आप सुन सकेंगे इलाइट इंग्लिश स्कूल तवांग की 5वीं कक्षा के छात्र तेंजन छटन से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा खेलने वाला। कल शाम 7:11 पर आप आनंद ले सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक वन एक के अंतर्गत तुलसी कुमार के साथ अन्य कलाकारों से चंद हिंदी फिल्में नगमे। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे आशिकी 2 फिल्म से तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाजों में, सत्यमय चैत्य फिल्म से तो आतिफ असलम और तुलसी कुमार के सुरों में, कबीर सिंह फिल्म से तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की आवाजों में, रेडी फिल्म से के और तुलसी कुमार की आवाजों में, पाठशाला फिल्म से तुलसी कुमार और हनीफ शेख के सुरों में, एयरलिफ्ट फिल्म से अमाल मलिक अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में, भूल भुलैया 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में और सत्य प्रेम की कथा फिल्म से तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाजों में चंद नगमे। कल शाम 7:45 पर सुनेगा आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कल रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन आप सुन सकेंगे कल रात्रि 8:30 पर। कल रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा न्यूज एट 9 आप सुन सकेंगे ठीक रात्रि 9:00। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोतों ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मुनपा में, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

Jesus,

Jamami

연자란조 도지장애고반율도 도지장애고반율도 인조 바댄자위 라마진보

선두서 본존재 지위 준비 토의 조회 대화공회 멀리 지전 지신세배

Yeah.

0: मुनि मुनि महामुनि यजोह
1: Om Mani Mani Mahamani Zo.

0: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय

0: पाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
2: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड 2 मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द ईयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीज। द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said, conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls and benefit the economy. The Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accident or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, a bench of Justices Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh held that salaried individuals, only the income tax return of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, the bench held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day Yatra scheduled to take place through the Nunwan Pahalgam and Balthal routes under tight security. The National Testing Agency, or NTA, has released the admit cards for the Indian Council of Agricultural Research's

0: पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। हार मानना आसान है लेकिन जीतने वालों की कहानी हमेशा संघर्ष से शुरू होती है। और हाँ दोस्तों, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता की मिसाल सभी चिकित्सकों को आकाशवाणी तवांग परिवार की ओर से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अथक प्रयासों और मानवता की सेवा को सादर नमन। नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त दर्जी डोलमा। तकनीकी सहयोगी राम चरण के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमें पहला फोन किस श्रोता से प्राप्त हुए हैं। हेलो नमस्कार।
1: Less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less, less

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो, मैं अमल बसमतारी हूँ, रंगापड़ा सोनीतपुर से।
0: अच्छा अमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कौन सी गीत आपके लिए आज मैं पेश कर सकती हूँ।
1: फिल्म का नाम रहेगा इश्क है तुमसे,
0: जी।
1: और इसके गाने के बोल है उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में, दिल दिल दिल ये गाना है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा समझ गई जी। और कोई है आपके साथ इस गीत को सुनने वाले?
1: जी, मेरे दोस्त है। सबसे पहले तो आपको भी सुनाना चाहता हूँ
0: जी।
1: और मेरे दोस्त है भाईकुन मुंडा।

0: ମଲ ବସୁମତାରୀ, ରମେଶ ପାତ୍ର, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ରଙ୍କି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରେମଜିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନୁପ କୁମାର, ଶରଦ ଦ୍ୱାରା ହେ, ରୁଖୁ ବେଲେ ମେଠେ, ଔର ସଭି କେ ସାଥ ଇସ ଗାନେ କୋ ମେ ସୁନାନା ଚାହତା ହୁଁ।
1: ଜୀ ଜୀ, ଔର ରଙ୍ଗପାରା ମେ ଅବ ମୌସମ କେସା ହେ?
0: ରଙ୍ଗପାରା ମେ ତୋ ରାତ କୋ ବାରିଶ ହୁଈ ଥି ଔର ଅଭି ଅଭି ଧୂପ ଦିଖାଇ ଦେ ରହା ହେ, ବହୁତ ଗର୍ମି ଚଲ ରହା ହେ, ଲେକିନ बारिश होने से भी इस बार तापमान बहुत ज्यादा से चल रहा है, 37 डिग्री के आसपास चल रहा है, 36 डिग्री चल रहा है।
1: जी जी, तो काफी गर्मी है ना।
0: और दोपहर को तो कल भी 39 डिग्री सेल्सियस हुआ था शाम को।
1: जी,
0: यहाँ तो बारिश होते रहते हैं वैसे तवंग में।
1: तवंग में तो थोड़ी थोड़ी बारिश होते रहते हैं, खैर हम तो पहाड़ ने और पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी बारिश होना तो लाजमी है, लेकिन आप सभी इस तपती गर्मी में अपने जरूर से ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैं आपकी फरमाइश पेश कर रही हूँ और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, रमेश बच्चों गुजरात आसाम से बोल रहा हूँ।
0: आपका बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। कैसे
0: हैं? हाँ जी, हम सभी अच्छे हैं और आशा करती हूँ आप भी सलामत होंगे।
1: हम भी अच्छे हैं।
0: जी जी, बहुत सुंदर। और बताइए कौन सी गीत हम आपके लिए आज पेश कर सकते हैं इस कार्यक्रम में?
1: गीत सावन को आने दो।
0: अच्छा, मूवी का नाम है सावन को आने दो। अच्छा, और गीत के बोल?
1: वही है,
0: सावन को आने दो, ये है ना? अच्छा अच्छा,
1: आने दो।
0: जी जी जी जी, जरूर पेश करेंगे। और बताइए अपने दोस्तों के नाम।
1: दोस्त के नाम है अमोल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, माइकन मुंडा, सोनू पात्र, संध्या रानी गगोई, चंद्रकांत राय, शरद द्वारा, जोगेंद्र रंकी और सभी लिस्टनर्स को ये गीत डेडिकेट करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और तो मैं क्या इसी के साथ आपके फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: ठीक है, धन्यवाद
0: जी, बहुत धन्यवाद।

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो टेक्सेला लांगे रंग
0: तशे दिल्ली ला पिमले टला नंगसे याला
1: सामाती जुड़िया फोन नहीं हुई होगे रंग
0: लेस लेस सम जी भूगो नहीं लतिश
1: सामाती हिंदी सम प्यार ने कहो ये सामाती नहीं है ना
0: ला उंगला
1: उच्चेत ला जे पुना ला ने सुन लो
0: लेस पुना ना चन ना नंगसे याला
1: ये वो सार लोग बंग के शी पुन्ते सार लानक सार यदम के शियां रंग इंजिन जे मा तो वा जो पासंग लां पासंग तो अच्छी दिन दवा जैसे लोग ये सब तो का इतने का ज्ञान से दीजिएगा
0: लेसला
1: ये ऐसे कोई नहीं का लामा अच्छे सांग सिंग तो उनको बस सांग से देश लाम अच्छे सांग लाम टेम सिंग लाम लोग सांग लाम के सेवे उस अपना दावत सिंग अपना काम सिंग
0: लेसला
1: निम्न सिंग सार वो तो हमारे बहुत ही ठीक है निम्न सिंग सार इसे इधर इसे तीन मुख पुना रिचुन इस लाइन तीन दो का पेम ऐसी वो जीत पे पुना वो तो वक्त पेम देश जंप्रियू जंप्रियसंग ऐसे मिली लग रहा
0: लेस ला लेस लेस इसे उत्तर जी इन्हाँ से जन्म ला नांगो सुनो इन्हाँ ला इसे मुनो इन्हें इसे समझ पूरी निकल दो इन्हाँ ला
1: लेस ला मेरे जन्म के से इन्हाँ नांगो सुनने ऐसा मुझे पूरी हो
0: लेस लेस अने इन्हाँ से तुक दिन नांगो समझ चिते इन्हाँ शेल पूरी दूसरा तुझे चिला

0: हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सुनारी आसाम से भाईकुन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: अच्छा भाईकुन मुंडा जी, आपका स्वागत है। और बताइए, कौन सी गीत आज आपके लिए पेश करूँ?
1: फिल्म का नाम है सूर्या और उसमें गाना है मैंने तुझसे प्यार किया है। कहना है
0: और कोई दोस्त और आपके साथ?
1: दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पत्र, योगेंद्र रंगपी, अंजलि बसुमतारी, दरासर बसुमतारी, गोगोई, सुनाराम रारुंग, संतरकांत ताई, संजारानी गोगोई और बहुत सारे हैं जो अभी तवांग आकाशवाणी तवांग सुन रहे। सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा और सभी नाम सच के लिए भी डेडिकेट रहेगा।
0: जी आपका बहुत धन्यवाद। तो क्या मैं इसी के साथ फरमाइश पेश कर सकती हूँ?
1: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कॉल करने के लिए।
0: जी आपका बहुत धन्यवाद। मैं

तो हर बुधवार के सुबह 10 बजे हमें जरूर फोन कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ ही अब आपके दोस्त दर्जी शर्मा को तकनीकी सहयोगी राम सिंह के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोता भी अपना ले रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इसे संचालित तथा प्रस्तुत करता थे दुर्जी रमा। श्रोता के साथ ही कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मीनाक्षी मजुमदार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले इस सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक है, और फिर बोइंग गाँव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से गांव के 20 से अधिक मकान जलमग्न हो गए हैं और धान के खेतों, खड़ी फसलों और पशुधन का व्यापक नुकसान पहुंचा है, जिससे कई परिवार तबाही से जूझ रहे हैं। सभी मंत्रियों ने निपको कॉलोनी में स्थापित अस्थायी राहत शिविरों का भी दौरा किया। अब तक अरुणाचल में मरने वालों की संख्या 4 है, जबकि राज्य में 21 लोग घायल हुए हैं। यहाँ के सभी 28 जिलों में से कुल मिलाकर 90,499 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लोग अपर सियांग, सियांग, क्रादादी और ईस्ट कामेंग जिले में पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीराम जी एक्ट 2025 के तहत मजदूरी की नई दरें तय की है, जो आज से लागू हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी की दरें बढ़ाई गई है। इसमें कहा गया है कि पहली बार 300 रुपये प्रति माह प्रतिदिन के अंतरिम वेज तय की गई है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इस कार्यक्रम के तहत तय कोई भी मजदूरी दर इस लेवल से कम ना हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में मजदूरी दरों में 15-25% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज्यादा लगभग 24.5% की बढ़ोतरी हुई है। जिन राज्यों में पहले से ही मजदूरी दरें ज्यादा थी, वहाँ भी दरों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान के साथ साथ सिंचाई, कनेक्टिविटी और ग्रामीण बुनियादी ढांचों को मजबूत करने, जैविक खेती और अधिक मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, कौशल विकास, कृषि तकनीकी और बाजार से जुड़ाव पर चर्चा की। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश की कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य टिकाऊ और अधिक मूल्य वाली कृषि का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचों को मजबूत करने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक अपनाने और बाजार कनेक्टिविटी में सुधार करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अरुणाचल, विकसित अरुणाचल और विकसित भारत के विजन में योगदान मिलेगा। राज्यपाल ने किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, कृषि स्टार्टअप और बाजार से बेहतर जुड़ाव के महत्व पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश के विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति

0: Booth level agents in assisting the booth level officers during the house to house verification and enumeration form collection so that every eligible elector is included and the electoral roll remains accurate, transparent, and error free. Representatives of the political parties actively participated in the discussion, shared valuable suggestions, and sought clarifications on various aspects of the revision process. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, आपने सुना आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तत्पश्चात रीजनल न्यूज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय शाम के 7:55 हुए हैं। आइए अब सुनते एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल है सरफरोशी की तमन्ना।

श्रोता भी आपने सुना एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम। का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत बथाना पटना ट्रक डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ इंडिया से। आप है बालकन वर्मा, अंजानी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश मिथाली मिथिलेश वर्मा के फरमाइश पर। आप सबके फरमाइश पर ये कार्यक्रम का पहला फरमाइश आनंद लेते हैं फिल्म नमक हलाल से आशा भोसले के स्वर में। अनजान के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बब्बी लहरी ने।

वेरिंगेरा पंजाब से आवसफ है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा। आप सबके पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत ये सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना दी की आवाजों में फिल्म चोरी चोरी से। इस गीत के गीतकार है हसरत जयपुरी तथा संगीतकार है शंकर जयकिशन।

पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से आप है सत्येंद्र कुमार चांसुलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसुलिया। निमानाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसवीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबके फरमाइश पर याना लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइश फिल्म बाबी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारलाल ने।

श्रोताओं समय आप आने ले रहे हैं। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है जनकपुरी सहारनपुर से आफे जॉन डिकास्टो, फिल डिकास्टो, रोजी डिकास्टो और विलिस डिकास्टो, मालवा रेडियो लिसनर एसोसिएशन विलेज हंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से आप है जगदीश दाखंड नाइमा, रंजुभाई दाखंड, युवराज सिंह दाखंड और शिवांगी दाखंड। आप सबके फरमाइश पर यह आनंद लेते हैं जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लोखरा ठाकुरान वाला फिरोजपुर पंजाब से आफजफ है सौरान सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरेल सिंह, अविरज सिंह, गुरनूर सिंह और सुखदीप सिंह। आप सबकी फरमाइश पर आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कभी कभी से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में शाहिर लुधियानवी के लिए इस गीत को संगीत दिया है कयाम ने।

श्रोता भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वास्तव फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलिए, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रूमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एंड्रसाइड अब से कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या। तत्पश्चात ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज़ @9। श्रोताओं, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। अब स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
1: जी धर्मेंद्र, फीफा विश्व कप में फ्रांस, मैक्सिको और नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज इंग्लैंड का सामना कांगो से और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैच के सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सवालेंका महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सेनर का दूसरे दौर का मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक पदक पक्का।
0: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर बोल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मैक्सिको ने इक्वाडोर पर जीत के साथ 40 साल बाद नॉकआउट का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में स्वीडन पर फ्रांस की 3-0 की जीत में एक बार फिर किलियन एम्बापे सबसे बड़े स्टार साबित हुए। विश्व कप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एम्बापे ने 45वें मिनट में अलिसो के पास को गोल में बदलकर टीम का खाता खोला। इसके बाद पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 53वें मिनट में बैडल बारकोवा ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इसके 21 मिनट बाद फ्रांस के लिए तीसरा गोल फिर एम्बापे के जरिए आया और टीम की जीत लगभग पक्की हो गई।
3: One of the great goals. It certainly would have been, and the technical ability that you need to execute this. His liquid goal, Michael Olise, absolutely wonderful to watch. And Mbappe! Star after French star. How they twinkle! The love here is for their leader. Didier Deschamps at a time of personal loss, enveloped by the players who looked at him.
2: इस गोल के साथ ही टूर्नामेंट में एम्बापे के 6 गोल हो गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बापे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी।
3: एब्सोल्युटली सेंसेशनल गोल। सो दे रिप्लाइड टू वन विद वन ऑफ देयर ओन। इट्स अ लवली बॉल फॉर बर्ग, फॉर हालैंड। He rolled it into an empty net. He gets all types of goals, but they all count the same. And on the big stage, this is a mighty one.
2: सह मेजबान मैक्सिको भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में

0: पहुंच गया है। 1986 में अपने घर में खेले गए विश्व कप में बुल्गारिया को हराने के बाद पहली बार जब मेक्सिको ने नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। जूलियन क्विनेक्स और राउल जिमनेज ने विजेता टीम के लिए गोल किया।
1: Cote d'Ivoire, gallant effort. They're out by the narrowest of margins, and Norway will play Brazil.
0: हम आपको बता दें कि मेक्सिको की टीम 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 विश्व कप में लगातार 7 नॉकआउट मुकाबले हार गई थी। वही 2022 कतर विश्व कप में टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
2: प्रशांत, जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की बात भी क्यों करना कर लें?
3: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। एशिया के सबसे पुराने डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल 24 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें से 60 टीमें टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले 25 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 शहरों में खेले जाएंगे।
4: दुनिया के तीसरे सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज कोलकाता में होगा, फिर 4 सप्ताह तक टीमों के बीच मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में भी खेले जाएंगे। वर्ष 1888 में शुरू हुए डूरंट कप का फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में एक बार फिर इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग टीमें, सेना की टीमें, उभरती हुई घरेलू टीमें और विदेशी टीमें एक साथ खेलेंगी। साथ नई टीम में श्रीलंकाई सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी और मेघालय प्रीमियर लीग चैंपियन नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल का गढ़ कोलकाता एक बार फिर टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा, जहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण और किशोर भारती क्रीड़ांगण में 2 ग्रुप के मैच, उद्घाटन मैच, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल तथा फाइनल खेला जाएगा। ये शहर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल एफसी, मोहम्मदन एससी, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ, भारतीय सेना और नई टीम बागपत एफसी और समलेश्वरी स्पोर्टिंग की मेजबानी करेगा। रांची पहली बार डूरंट कप की मेजबानी करेगा, जहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक लीग मुकाबले और 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये शहर जमशेदपुर एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना और डिफेंडर्स एफसी की मेजबानी करेगा। उधर इम्फाल का खुमान लंपक स्टेडियम 28 जुलाई से 17 अगस्त तक लीग मुकाबलों और 1 क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करेगा। इस ग्रुप में स्थानीय क्लब TRAU एफसी और निरोका एफसी, भारतीय नौसेना और पदार्पण कर रही एफसी रेंगडाई शामिल हैं। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक लीग मुकाबलों के अलावा 1 सेमीफाइनल मैच होगा। इस मैदान पर शिलांग लाजोंग एफसी, नोंगसे एसएस एंड सीसी, लैंगसनिंग एफसी और पदार्पण कर रहा मुंबई एफसी खेलेगा। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम 1 से 13 अगस्त तक लीग चरण के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस ग्रुप की मुख्य टीम है, जिसमें एफसी 1 बोडोलैंड एफसी और कार्बी आंगलांग मॉर्निंग स्टार एफसी भी शामिल है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: दोस्तों, फुटबॉल की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 मैच की सीरीज की शुरुआत आज से चेस्टरली स्ट्रीट में होने जा रही है। आयरलैंड के हाथों पिछली सीरीज में 2-0 की हार के बाद अब हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की तेज उछाल भरी पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और क्या पिछली सीरीज में बेंच पर इंतजार करते रह गए वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। सुनिए ये रिपोर्ट।
5: श्रृंखला एक, सवाल अनेक। सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में मौका मिलेगा? क्या पिछली सीरीज में संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठाने और सूर्यवंशी को मौका देने का बड़ा कारण बन सकती है? टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहते, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पैक करने की बात कहकर काफी कुछ इशारा दे जाते हैं।
6: देखिए, अभी हर एक इंडिविजुअल जो टीम में खेल रहे हैं सबने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि एक अकेले इंडिविजुअल ने किया है, बट हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योरिटी हमें बिल्ड करना है ताकि हर एक इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस रहे गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट्स। एंड जो लोगों ने पिछला वर्ल्ड कप जीता है, डेफिनेटली उनको एक तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20, और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे, तो

0: फिर पैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: सीरीज के शुरुआत के पहले भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशी ने इतना तो कह दिया है कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
2: He's absolutely ready to play international cricket. There's no doubt about that. I think it's not a question to say you can leave Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago, a guy who's had a fairly good IPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a long run in the team. So, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you all to see him play.
1: सवाल तो ये भी है कि पिछली सीरीज में बेअसर दिखी भारतीय बल्लेबाजी तेज और उछाल वाली मुश्किल विकेटों पर मेजबान टीम को कितनी चुनौती दे पाएगी। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं, साथ ही आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिनर भी हैं। वैसे भी रिवर साइड ग्राउंड पर गेंदबाजी का दबदबा रहा है, यहां न्यूनतम स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है। जाहिर है सीरीज काफी कठिन रहने वाली है, इस बात को कप्तान श्रेयस अय्यर भी मानते हैं।
0: All of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there, getting acclimatized to the wicket, to the conditions, we fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there. And over here also, the dimensions are pretty much similar, but the ground is flat and you feel the vibe, you feel the stadium vibe, the crowd would be intense as well. We've played in such conditions, such situations before.
1: उधर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथिल, विल जैक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटन जैसे नाम हैं। आयरलैंड के खिलाफ ट्रैक से उतरी दिखी भारतीय गेंदबाजी की अब और कड़ी परीक्षा होने वाली है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स भी कसौटी पर कसे जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरलैंड से हार के बाद हतोत्साहित टीम में कप्तान श्रेयस को नया जोश और जीतने का जुनून भरना ही होगा, तभी इस कठिन सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम अपना दबदबा बना पाएगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
3: अब बात T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। ICC ने T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने लगभग एक साल से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए, साहिबजादा फरहान तीसरे, फिल शॉल्ट चौथे, पाथुम निसंगा पांचवें और तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं। वहीं बात अब महिला T20 क्रिकेट पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया।
4: और प्रशांत, बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। प्रतियोगिता में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंडर 19 मिक्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के यिरेंग तांग और यी जियांग पर 11-9, 11-6, 11-7 की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई।
3: और अब बात विंबलडन पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के यानिक शिनर का मुकाबला पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस के साथ चल रहा है। सातवीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज देर शाम दूसरे दौर में मिस्र के स्टाफिनोस सित्सिपास के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में टॉप सीड सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गई है। नौवीं वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है।
4: और उधर भारत के बेलावन संथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर टूर मुंबई स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन से एक खबर है प्रशांत, जापान के यात्सुओ शिरो में भारत के ध्यान संतोष ने आज उलटफेर करते हुए थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नातात प्रेम पुंगवोंग को पराजित किया। संतोष ने लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में 21-17, 21-18 से जीत हासिल की।
3: और धर्मेंद्र, बॉक्सिंग से भी एक खबर आ रही है। भारत अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते खिलाड़ियों का मिला जुला दल उतारेगा। ये प्रतियोगिता 3 से 16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के

मतदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति

0: ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य

0: की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highways.

कार्यक्रमों की सूचना दे दूं। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा जगजीत सिंह की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 आप आनंद ले सकेंगे चंद कोपोरक आधुनिक नगमे। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम मेला मंच। कल दोपहर 3:50 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल शाम 5:35 पर सुनेगा दिंग दुई समा। कल शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता। और कल शाम 7:11 पर आप आनंद ले सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। तो श्रोताओं, ये तो थे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त सूचना। अब समय हो चला आप श्रोताओं से विदा लेने का। हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 अंग्रेजी में समाचार के तहत। तब तक के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत समूह, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री लाम सिंह, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी सहायक श्री अमोल कुमार दास के साथ आज की हिंदी उद्घोषिका ये शुभ मुख्य शुभरात्रि। जय हिंद।